Sumita Druma da Lesho Mini Sunasini Sumatura Mashini

एफएम बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय दिन के 11:58 होने को है। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का गीत आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है अनाड़ी।

वाला धरती पे आए चमक चांदनी, होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा झूमके गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ को। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है चालबाज फिल्म से।

0: नक्शीदान प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं चालबाज फिल्म से। इस गीत को कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी ने और आवाज दी है अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने।
1: आई है।

0: अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अभी आपने सुना चालबाज सुनते ये गीत। श्रोताओं, अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: है वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
4: So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत, हम किसी से कम नहीं सुनते। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ने।

0: है तो आ सपना दे दे,
1: वो सपनों की साजा है एक सपना दे दे,
0: सपना लेना है तो

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत हम किसी से कम नहीं सुनते। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हमराज।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमराज बंस से अलका याग्निक की आवाज़ को। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
0: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी, 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
0: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोठिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजी।
0: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
0: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
0: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नू यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल।

0: El C. यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।

0: चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़,
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पो, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अबू?
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
6: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
6: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
6: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी
6: मैं अभी किसके बारे

0: मैं बता रहा था।
1: वो कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ
1: वो कांपते हुए बोला,
3: वो कंचा।
2: कंचा?
1: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
1: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
3: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
1: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
3: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: तब शक हुआ,
3: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
1: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
3: नहीं मास्टर जी।
1: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
3: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
3: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
3: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
3: पैसे।
2: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
3: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
1: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
3: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
1: चपरासी एक नोटिस लाया।
4: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लो।
1: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
1: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के

0: पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
3: बच्चों एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
1: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया, फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे?

0: है ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
0: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
2: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
0: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
2: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
2: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
2: कैसी कैसी सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
0: दे दो।
1: ये लो।
2: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़ कर माँ के गले लग गया।
0: माँ,
2: अरे आ गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
0: क्या देखो माँ?
2: अरे ये क्या है?
0: मैं नहीं बताऊंगा।
2: मुझसे नहीं कहेगा?
0: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
2: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
0: खरीदे हैं।
2: पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
0: दोपहर को दिए थे ना?
2: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
0: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
0: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र
4: इसी के साथ हमारा आज का ये उमंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। दोपहर के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सोमवार से खुल जाएगा। विश्वभर से प्रमुख नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिमी एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सुश्री सीतारमण ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर में शुरू होगी। प्रदेश में नहरों के जीर्णोद्धार और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जायका प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए के 12 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन कार्यों में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की सिद्धमुख नोहर और भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत और रीलाइनिंग के काम किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने से नहरों की जल वहन क्षमता में सुधार होगा और किसानों के खेतों तक पर्याप्त मात्रा में पानी तेजी से पहुंच सकेगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इन स्वीकृत कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा झालावाड़ के खानपुर इलाके में दर्ज हुई। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़, झालावाड़ के पचपहाड़, छीपा बड़ोद, चौमू, मांगरोल, छबड़ा और बसवा में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कल जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। राज्य में कई स्थानों पर अभी भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सर्वाधिक तापमान फलौदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिलानी में 41.2 और बाड़मेर में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राज्य में कहीं भी हीट वेव की स्थिति नहीं है। प्रदेश भर में आज सोमवती अमावस्या श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी और तिलस्मा महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीप दान कर समृद्धि की कामना कर रही है। वहीं बाड़मेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का सिलसिला दिन भर से जारी है। तीर्थराज पुष्कर में आज पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां सरोवर में स्नान करते समय गहरे पानी में गए एक युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। अजमेर जिले के जसनगर क्षेत्र में लूणी नदी के रपट पर एक बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में

0: सवार एक ही परिवार के सदस्य सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चौथ का बरवाड़ा के पास मिर्ची से भरे एक ट्रक के त्रिलोकपुरा अंडरपास में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भरतपुर के बयाना स्थित दरबारहना झरने के नीचे पिकनिक मना रहा एक युवक गहरे पानी में चला गया, इससे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मोमल।

मोबाइल कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और आज की दोपहर में आपके दिल की कुछ बातें साझा करने लेकर हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी प्रीति भाटिया। तो कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि मेरी सभी बहनें, मेरी सभी सखियाँ अपनी गृहस्थी के, अपने घर आंगन के जो कामकाज हैं वो करने के साथ साथ, कुछ ऐसी भी सखियाँ हैं हमारी जो घर के बाहर भी काम करती हैं, जो दफ्तर जाती हैं या व्यापार करती हैं, तो मेरी सभी सखियाँ कुशल मंगल से होंगी, अपने कार्यों को बहुत खूबसूरती के साथ अंजाम तक पहुँचा रही होंगी, अपने संसार को महका रही होंगी, लेकिन उन सबके साथ में वो अपना भी ध्यान रख रही होंगी। मैंने आपने कुछ चीज़ों पर गौर फरमाया है कि हमारा जो बचपन था और आज का जो बचपन है, आज के बच्चों का मतलब जो बचपन है, उसमें काफ़ी चीज़ें बदल गई है। यानी हमें हमेशा से ये बातें सिखाई जाती थी कि आपके घर में अगर कोई आते हैं, बड़े आते हैं, या चाहे आपके दादा दादी की संगति के लोग आते हो, बुज़ुर्ग आते हो, रिश्तेदार आते हो, पापा की कोई, मम्मी के कोई दोस्त आते हो, बुआ चाचा की कोई मित्र आते हो, उनसे कैसे बात करनी है, उन्हें पैर छूने हैं, नमस्कार करना है, या जो जिस भी तरीके से हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण करके अदा करते हैं, जो हमारे सम्मान करने के तरीके होते हैं, वो हमें कैसे करने हैं, कैसे हमें बैठना है, हमें बैठने को आसन देना है, पानी की गिलास लेकर के आनी है अपने बड़ों के सामने, इस तरह की कई सारी चीज़ें होती थी जिस पर हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता था। और कई बार तो ऐसा भी होता था ना बहनों, कि अगर हम कुछ भूल जाएँ, मतलब अगर कभी कोई गेस्ट आया है और हमने शायद नोटिस ना किया हो या रिलेटिव के आने पे, तो घर वाले बोलते थे देख नहीं रहे हो, ये आए हैं, चलो नमस्ते करो, पैर छुओ, मतलब उनके सामने ही हमारी लाइन लग जाती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, बच्चों ने हर चीज़ को अपने दिल पर लेना शुरू करा। और बच्चों का तो छोड़िए, मुझे अच्छे से याद है कि अगर घर में शाम को कोई आता था तो हम बहुत अनुनय विनय करके उन्हें कहते थे कि भोजन करके जाना है, नहीं नहीं थोड़ा खा करके जाना है, एक रोटी ही खा लीजिए हम, या फिर हमारी मम्मी को बोलते थे कि चलो इनके लिए चाय के साथ पकोड़े उतार लो, ये लेकर के आओ, और वो बड़ी ही, मतलब बोलते ना, खुशी खुशी वो सारे काम करते थे, आशीर्वाद ढेर सारे हमें मिलते थे। ये जो पीढ़ी है ना, जिस पीढ़ी में हम तो गवाह हैं, इस पीढ़ी के भी और उस पीढ़ी के भी, इसमें बहुत चीज़ें बदल गई है, इतना परिवर्तन आ गया है ना, आप खुद सोचिए कि वाकई में क्या ये बात सिखाने की ज़रूरत है कि हम अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करें। घर में कोई आए या सड़क पर हमें कोई मिले, हमारे वर्क प्लेस में कोई मिले, न जाने क्यों हमारे अंदर, या कहा जाए इतना रूखापन आ गया है, रिश्ते इतने बदल चुके हैं, चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, बड़ों का सम्मान करना मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हमारी जेब से कुछ नहीं जाएगा। दो तीन चीज़ें हैं जो मेरी दादी मुझे हमेशा बताती थी, शायद आप सभी की भी दादी नानी ने ज़रूर बताया होगा, कि अगर कोई दुश्मन भी हमारे दरवाजे पर आ जाता है, मतलब कितना भी बड़ा दुश्मन हो, जिससे आपकी बातचीत नहीं है।

0: हैं, जिसने आपके साथ कुछ बहुत गलत करा है, आपकी खिलाफ कोई बोल रहा है, जो भी है क्या, लेकिन अगर कोई आपके दरवाजे आया है तो आए को आया कहना है, मतलब आपको जब दरवाज़ा खुल के उन्हें अंदर आने के लिए कहना है, कुछ ना कर सके आप उनके लिए, दिल ना हो तो भी आपको उनको बैठने के लिए स्थान या आसन देना है और पीने के लिए पानी देना है, बस इतनी चीज़ तो करनी करनी है चाहे दुश्मन आपके दरवाजे खड़ा हो। और मैं सोचती हूँ कि न जाने पुरानी पीढ़ी की जो बातें हैं उनकी क्या तासीर रही होगी ना, मतलब अब सोचिए कि उन्हें पता था कि ये बातें बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम समाज में रहते हैं और सभी लोग अच्छे नहीं हैं, सभी लोग बुरे नहीं हैं, सभी लोग हम चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं। तो बचपन से ना वो नसीहतें हमेशा हमें बता दी जाती थी कि आए हुए व्यक्ति का, आपके दरवाजे आए हुए व्यक्ति का कभी अनादर नहीं करना है। इसी तरह कई और बातें भी बताई जाती थी कि जितना हो सके आप उतना किसी की मदद करें, बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुरूप आप ज़रूर करें। लेकिन आज के समय में हम सच में देखें ना तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मतलब इतनी बदल चुकी है कि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, लोग अपने घर के बुज़ुर्गों को पूछते नहीं हैं, अगर गली मोहल्ले में किसी ने कह दिया, थोड़ा सा काम बता दिया, कोई किसी के बच्चे को आज हक से कुछ कह नहीं सकता। और मुझे याद है हमारे समय में तो पड़ोसी या बड़े लोग जो हैं वो आपको काम बता देते थे और हम उनके काम भाग भाग के करते थे, कभी हमारे पेरेंट्स हमें मना नहीं करते थे कि आप क्यों जा कर के किसी का काम कर रहे हैं। लेकिन समय ऐसा बदला कि कोई किसी के बच्चे को काम कहना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि अगर काम कह दिया तो बवाल हो जाएगा। सोचिए हम कौन से समय में रह रहे हैं ना, बहुत ही अलग सा समय आ चुका है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कुछ पुरानी सी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें, हम बच्चों को बताना शुरू कर दें कि कैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है, किसी का काम करने से हम नीचे नहीं होते हैं, किसी का सम्मान देने से हम घटते नहीं हैं। ऐसी बातें आज के समय में बच्चों को बताने की वाकई में बहुत ज़रूरत आ चुकी है। तो बस अपने बचपन को याद करिए, उसके पिटारे को याद करिए, और छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब हम अपने बचपन को याद करना शुरू करेंगे तो हमें अपने समय की बातें भी याद आ जाएगी और उस में से निकाल के कुछ नसीहतें अपने बच्चों के साथ ज़रूर बांटिए, क्योंकि यह समय वही है जब हम उन्हें एक कच्ची मिट्टी की तरह, हमारे बच्चे होते हैं, हम उन्हें शेप दे सकते हैं, हम उन्हें किसी अच्छी तरीके से, कहा जाए किसी अच्छी भाषा में अपनी बात समझा सकते हैं। तो बस अब किसका है आपको इंतज़ार, कुछ बातें अपने बच्चों के साथ बैठ के उन्हें समझाएं, किसी कहानियों के रूप में, नसीहत के रूप में, ताकि बड़ों के सम्मान की परंपरा जो है वो बनी रहे। अच्छा, मैं भी आपको कितनी बातें कर चुकी हूँ, लेकिन चलिए कुछ ज़रूरी जानकारी सुनाती हूँ आपको और उसके बाद हम गुनगुनाएंगे एक मीठा सा गीत।
1: से देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: तो कुछ जरूरी जानकारी हमने सुनी और इसके बाद में समय आ चुका है गुनगुनाने का एक मीठा संगीत और गीत के बाद में फिर हम करेंगे ऐसी ही ढेर सारी बातें और आपस में चर्चा।

0: तो इस मीठे से गीत को सुनने और गुनगुनाने के बाद हम एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वो है सामाजिक मेल मिलाप के लाभ। अक्सर हमने देखा है कि आजकल के समय में कुछ लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं कि वो सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने, यानी सामाजिक रूप से जब हमें किसी रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाना है, हमें अपनी सोसाइटी में आस पड़ोस में अपने अपार्टमेंट या बिल्डिंग के आसपास अपनी गली मोहल्लों में किसी के घर में खुशी या गम में शरीक होना है, तो हम उससे कनी काटते हैं, हम उससे बचते हैं। तो ऐसे में मुझे अरस्तु का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य जो है, कथन है, वो याद आ रहा है कि अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता है। तो सखियों, मानव जीवन की विडंबना ये है कि पशु हम होना नहीं चाहते और देवता हम हो नहीं सकते हैं, तो हम इसी बीच मनुष्य बन के ही रहते हैं। अब अगर हम एक इंसान के तौर पर सोचें तो बहुत ज़रूरी है कि हम सामाजिक तौर पर हर जगह ना पहुंच सके बेशक, लेकिन कम से कम जहां हमारा जाना ज़रूरी हो वहां हम ज़रूर पहुंचे। अब देखिए, पुराने लोग कितनी सामाजिकता निभाती थी, किसी के घर में अगर कोई दुख की घड़ी आती थी, शोक होता था, मातम होता था, कोई बीमार होता था, कुछ इस तरह का होता था, तो कितनी भी काम हो, कितनी भी व्यस्तता, उस समय निकाल के अवश्य जाते थे। हाँ, शादी ब्याह में चाहे ना जा पाए, और जब नहीं जा पाते थे ना शादी ब्याह में, तब भी अपने घर से किसी एक या दो सदस्यों को भेजते थे, क्योंकि आज की तरह उस समय इनविटेशन कार्ड में ओनली 2 मेंबर्स ही लिखा होता था, या 4 सदस्यों के लिए, पूरे परिवार के लिए नियुक्त होते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज़्यादा मॉडर्न होने शुरू हो चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन की हवा हमें ऐसी लग गई है कि हम दोस्तों के साथ तो समय बिताते हैं पर परिवार के सदस्यों से हम हमेशा कनी काटते हैं। उतने बड़े परिवार तो अब रहे भी नहीं है बहनों, उतनी बुआ, काकी, नानी, चाची, इतने बड़े परिवार होते थे, सबसे ज़्यादा बड़े परिवार थे ना, संतान ज़्यादा होती थी तो ज़्यादा आना जाना सब काम पड़ते थे। अब तो बहुत छोटे से परिवार रह गए हैं, अब तो बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ऐसे में जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं हम उनसे बना रखें, कम से कम हम कभी कभार उनसे फ़ोन पर बात कर लें। कुछ लोग बेशक आपको फ़ोन नहीं करते होंगे, आप उन्हें कर लें, कुशल क्षेम पूछ लें, उनके हालचाल, उनके बच्चों के हालचाल पूछ लें, बुजुर्ग हैं तो उनके बारे में पूछ लें। कभी हम उस तरफ जा रहे हो और आसपास में किसी रिश्तेदार का घर है तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब लोग होटल, धर्मशाला, इन सब जगह नहीं स्टे करते थे, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते थे और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, जैसे हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वैसे ही मेहमान भी घर का सदस्य की तरह था। पर अब कोई गेस्ट आता है तो उसे बहुत हाई फाई फैसिलिटीज देनी होती है, इसलिए लोग किसी के घर जाते भी नहीं हैं और बुलाना भी कम पसंद करते हैं। पर जब सामाजिक मेल मिलाप होता है ना तो हमारे ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा प्रगाढ़ रिश्ते होते हैं, हम अपने दिल की बात शेयर कर पाते हैं, हमें कुछ अच्छा पता चलता है। अगर बच्चे की एजुकेशन की बात हो और अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन कराएं, तो उस बच्चे की उम्र के कोई ना कोई बच्चे आपके घर परिवार में होंगे, अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट में, अगर आप उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा, या जो बच्चे उस स्ट्रीम से निकल चुके हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। पर अगर हमारे रिश्ते हैं ही नहीं, कुछ भी हमारा रिश्ता नहीं है, तो हम किस मुँह से किसी से बात करेंगे। तो कोशिश करें कि जब हम अस्पताल में किसी को मिलने या देखने जाएं तो वहाँ कुछ देर रुके, ना कि खड़े खड़े 2 मिनट बैठ करके चले आएँ। अपने घर से खाना ले जाने के लिए भी उन्हें ऑफर करें, कोई और सहायता के लिए करें। कभी आप उस व्यक्ति को जिसके फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में हैं उससे कह दें कि आप थोड़ी देर जाएँ और आराम करें, मैं यहाँ बैठा हूँ। इस तरह की चीज़ें करें, क्योंकि आज किसी और पे गम की घड़ी है, कल को आप पर भी आ सकती है। किसी रिश्तेदार की जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो या कम अच्छी हो, किसी की कन्या का विवाह हो या किसी के बच्चे की एजुकेशन में कुछ ज़रूरत हो, तो प्लीज़ मदद करें, बिल्कुल भी पीछे ना हटें। सामाजिक मेल मिलाप से जीवन ज़्यादा आसान होता है, जटिल नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखें। अच्छा, बातें मैंने आपसे खूब सारी कर ली है, चलिए सुनते हैं कुछ जरूरी जानकारी और फिर गुनगुनाएंगे मीठा सा गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक

0: सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: और बस इन्हीं बातों के साथ अब समय आ गया है गुनगुनाने का एक मीठा सा गीत। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

मन हर पल हो गए तेरे, बैठी है तू बस प्यारे प्यारे चेहरे ने पल दे इशारा दिखा दे आँखों ने सबसे कोई प्यारा हमसे जोड़ी ना सुशर्मा।

तो प्यारी सखियों, हमने एक मीठा सा गीत सुना, कहना ही क्या। कई बार ऐसा होता है कि हम स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ जगह हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ जगह वाकई में हमें अपनी बात कहनी चाहिए और वहाँ पे ना हम बस मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, और ये बहुत गलत चीज़ है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि आप सभी जानते हैं कि सबके घर में अन्नपूर्णा जो है वो एक महिला और एक स्त्री ही होती है। उसे ही हम अन्नपूर्णा कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे अन्न की जो ज़रूरत है, जो हमारा खाना बनाना, बाकी सब कार्य करना, उसे एक महिला ही बहुत बखूबी निभाती है, बहुत अच्छे से करती है। पर आप देखिए, ज़्यादातर घरों में, मैं आपसे भारतीय परिवारों की, भारतीय महिलाओं की जो मेंटेलिटी है उसके बारे में बात कर रही हूँ, जो सबके लिए बनाती हैं, सबके लिए करती हैं, लेकिन उसकी अपनी थाली कभी देखें, जो बच जाता है ना वही खा लेती है। कई बार तो करीने से अपनी थाली को सजाना तो बहुत दूर की बात है, उसे उसमें जो खाने की चीज़ें वो रखती भी नहीं है, जो प्लेट ऊपर किसी में ढक करके रखी थी सब्जी में, उसी में काम चला देती है अपना, कि जैसे तैसे करके भी हमें बस काम करना है, हमें खाना खाना है, सबको खाना खिला के बहुत थक जाती है। तो अपनी केयर है वो तो वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करती है। क्या हर महिला डिजर्व नहीं करती कि उसे संतुलित आहार मिले? क्या महिला डिजर्व नहीं करती कि उसकी थाली भी वैसी ही हो जैसी दूसरों की होती है? सबकी थाली में सलाद डालेगी, दाल अच्छे से रखनी, सब्जी रखनी, चावल रखने, पापड़ या जिस तरह के नमकीन का शौक होता है वो थोड़ा सा अचार रख लेगी, सूखी सब्जी रख लेगी, मिठाई का एक पीस दो पीस जो भी है वो रख लेंगी, लेकिन अपनी थाली में जो बच गया वो खा लेंगी। कभी दाल नहीं, कोई बात नहीं, चावल को छोक के अचार के साथ खा लेंगी, या फिर ऐसे ही सब्जी के साथ खा लेंगी, कभी दही के साथ दूध में भिगो के, या रोटी खा लेंगी, या जैसे भी है, पेट ही तो भरना है। क्यों महिला संतुलित आहार नहीं ग्रहण करती है? क्यों वह खुद का ध्यान नहीं रखती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर महिला डिजर्व करती है कि वो, उसे भी वही केयर मिलनी चाहिए ना, उसे वही प्यार मिलना चाहिए, वही परवाह मिलनी चाहिए जो घर में वो दूसरों को देती है। तो जब भी आप अपनी भाभी, अपनी मम्मी, अपनी दादी की थाली ऐसी देखें ना, जिस थाली को देख के आपको लगे कि नहीं ये कैसे परोसी हुई है, तो उन्हें टोके नहीं, उन्हें कुछ कहे नहीं, क्योंकि देखिए वो नहीं समझने वाले हैं। आप खुद ही थोड़ा सा कष्ट करें, खुद ही आगे बढ़ें और अपनी तरफ से एक बेहतरीन कोशिश करके चीज़ों को ठीक करें। और मैं अपनी सभी सखियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सभी से

बताना चाहती हूँ कि अपने बारे में सोच लेने में और अपनी थोड़ी सी परवाह कर लेने में कुछ नहीं घटेगा। अब प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करें। आप अच्छे से खाने के समय खाना खाएं, नाश्ते के समय नाश्ता करें, अच्छे से अपनी थाली को परोसें, संतुलित आहार ग्रहण करें। उम्र के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर उतनी एनर्जी इतना स्टेमिना नहीं रहता है जितना पहले था। और आप अक्सर देखिए 50, 55, 60 की उम्र की महिलाएं कहती हैं, अरे पहले तो इतना कर लेते थे अब नहीं। अब उन्हें कैसे समझाएं कि जब आप शादी करके आई थी तो आप 18-20 साल की थी उस समय से, अब आप 60 साल की हो गई तो 40 साल में भी पुर्जे घिस गए हैं, वो दम नहीं रहा है और आहार आपने कम कर दिया है। तो सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, जूस लेना शुरू करें, फ्रूट्स खूब खाएं। दूध अकेला पीना पर्याप्त नहीं है, कैल्शियम का स्रोत नहीं है, आप भी ड्राई फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, सीड्स खाएं, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर वे में अपना चेकअप कराते रहें, हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने पे कुछ ना कुछ छोटा बड़ा खाते रहें। सिर्फ सबकी परवाह ना करें, अपनी भी परवाह करें। और मैं भी आपकी परवाह कर रही हूँ, इसलिए आपको ले चलती हूँ सुनाने एक और मीठा सा गीत।

और प्यारी बहनों, अब हम बात कर रहे हैं पीएम आवास योजना के बारे में। आप जानते होंगे कि समय समय पर हमारी सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिनका फायदा गरीब तबकों के या निम्न वर्ग के लोगों को या उन लोगों को मिले जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। आप जानते हैं इस तरह की जो योजनाएं होती है ये बेसिकली क्यों चलाई जाती हैं? ताकि हम मानते हैं कि समाज में बराबरी आनी चाहिए। अब देखिए, बराबरी लाने के लिए ये तो संभव है नहीं कि हम सबको इकोनॉमिकली एक ही स्टेज पे ला करके खड़ा कर दें। तो हम अपनी तरफ से जो लोग समाज की मुख्य धारा से थोड़ा सा पीछे हैं, मतलब जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से हट कर के लोग हैं, हम किसी न किसी तरीके से उन्हें सपोर्ट दे करके, उन्हें सहयोग दे करके, किसी न किसी तरीके से उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें आगे लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें संबल देते हैं, उन्हें मदद का एक हाथ देते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मुख्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और निर्माण सहायता योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बहनों? कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, LIG कैटेगरी के, और जो मध्यम आय वर्ग के MIG कैटेगरी के परिवार हैं, उनके पास कम से कम रहने के लिए उनका अपना घर हो, उनकी छत जो है वो पक्की हो, और किफ़ायती दरों पर उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कई तरह की मुख्य सुविधाएं और सब्सिडी भी है, जैसे ग्रामीण आवास PMAYG, इसके तहत जो भी लाभार्थी होते हैं उन्हें उनका घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, स्पेशली प्लेन एरियाज में, मैदानी भागों में। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए 12,000 रुपए, मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी का लाभ भी मिलता है। तो कम से कम सरकार इतनी कोशिश तो कर ही रही है कि वो सब कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन कुछ ना कुछ दे करके हमारी मदद करने का प्रयास कर रही है। और इसी तरह जो PMAYU यानी अर्बन एरियाज में, शहरी एरिया में जो आवास है उसमें जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है EWS कैटेगरी, उनके परिवारों को घर निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। होम लोन तो दिए ही जाते हैं 6 लाख से 18 लाख तक के, जिस पर 6.50% तक की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। तो परिवार के पास एक शर्त है कि भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, और शहरी योजना के तहत वार्षिक आय 3 लाख से लेकर 18 लाख तक की होनी चाहिए। इस बारे में आप यदि और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज़ इस तरह की बातें ना दूसरी महिलाओं को बताया करें जिनके साथ आप बैठते हैं उठते हैं। अगर आपके परिवार में कोई आर्थिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है उसे आप बताएं, क्योंकि जेब से निकाल के पैसे देने में तो फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पैसों की कमी हो जाएगी, लेकिन जब हम किसी को इस तरह की जानकारी देते हैं जिसमें हमारा कुछ नहीं जाता है तो एक अच्छी माउथ पब्लिसिटी तो होती है। आपके घर में जो काम करने के लिए आती हैं आप उन्हें भी बता सकते हैं, बजाय हम अनर्गल यहाँ वहाँ की किसी से बात करें, हम इस तरह की बातें करके सरकार को उनके उद्देश्य प्राप्ति में थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो बातें मैं आपसे और भी करूँगी, पर एक बहुत मीठा सा गीत सुनते हैं, गुनगुनाते हैं।

तो प्यारी सखियों, हमने गुनगुना एक मीठा संगीत और आज एक दिल की बात मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि कई बार दिल भर जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, परिस्थितियाँ हालात हमारे हाथ में नहीं होते, हमें लगता है कि हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पकड़ने की चाह में, कुछ पाने की चाह में हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, बहुत कुछ सा छूट जाता है, हम रोक नहीं पाते हैं। ऐसे समय में हर कोई हमें सांत्वना देगा, हमें समझाएगा, सर पे हाथ भी फेर देगा, पीठ भी थपथपा देगा, रोने को अपना कंधा भी दे देगा, पर जो दिल के भाव हैं वो तो शायद कोई नहीं समझेगा। इसके लिए बहुत सुंदर सा ना मुहावरा, लोकोक्ति या कथन बना है कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीठ पर आई। अगर आपने किसी की बिवाइयाँ यानी एड़ियाँ फटी हुई देखी है तो देख के आप कह देंगे ये लगा दो, वो कर दो, अरे इसके भी था उसके भी था, मोजे पहन लिया करो, पानी में कम पैर रखा करो, रात को सोते हुए वैसलीन लगा दिया करो, ये वाला क्रीम लगा दो, फलाने वाले डॉक्टर को दिखा दो, मोम भर दो, पता नहीं क्या क्या। तो नसीहतें, मशवरा, सलाह देने के लिए हजारों मिल जाएंगे, लेकिन बात तो यहाँ पर पीड़ा की हो रही है। वो पीड़ा और वो दर्द कोई कैसे सहन कर पाएगा जब तक उसने उस चीज़ को करीब से देखा ही नहीं है, आप उस चीज़ से गुजरे ही नहीं हैं। किसी और के जूते ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर जब आपने उसमें कदम रखा तो आपको पता चला रही सोल अंदर से तो बड़ी हिल रही है, दो चार कीलें भी कोने कोने से कभी ना कभी लग जाती है। तो ज़िंदगी ना बिल्कुल ऐसी ही होती है, जब तक हम किसी की स्टेज पर आते नहीं हैं, एग्जैक्टली कोई इंसान क्या फील कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, कौन से चैलेंजेस देख रहा है, हर दिन कितनी कितनी बैटल्स वो फाइट कर रहा है, जब तक आप उसकी जगह नहीं आएंगे तब तक आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम जजमेंटल थोड़े कम हो तो ठीक रहता है। और इसमें भी एक और चीज़ है कि कई बार हम सोचते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है, आसान है, दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। मैं आपको बताऊँ मुझे क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो करना बड़ा फ़ायदे में रहता है, जिस काम को करके आपको बहुत फ़ायदा होता है और बहुत आसान होता है, जानते हैं वो कौन सा काम है? वो काम है बटरिंग करना, खुशामद करना, अपनी ज़मीर को मार करके चमचागिरी करना, ज़बरदस्ती किसी की बातों पर अपनी गर्दन हिलाना, गलत चीज़ों पर भी अपनी सहमति देना। और ये काम ऐसा है ना जिसमें एज सच तो कोई सैलरी नहीं मिलती है, पर बहुत एडवांटेज है, बहुत फ़ायदे हैं। और आप ना इस तरह के काम में लिप्त लोगों को हर जगह देखेंगे। आप देखेंगे घर परिवार में आप बिल्कुल सही हैं, बहुत फेयर तरीके से चल रही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने बहुत ईमानदारी रखी, आपने किसी का कुछ लिया नहीं है, इतना काम कर रहे हैं, जितना बन पड़ता है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा उसको आपसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कोई एक ऐसा दोस्त है जो हर किसी की बुराई करता है लेकिन फिर भी वो बहुत गुडी इमेज क्रिएट करे हुए हैं, और आप जो हर किसी के समय भाग करके जाते हैं वो अनायास ही बुरे बन जाते हैं। लगता होगा ना कई बार आपको, क्या तराजू में जो पलड़ा आपकी तरफ है उसमें वजन थोड़ा कम है, आपको भी लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर ने आपको ही चुना है उन तमाम परेशानियों को झेलने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि आप मजबूत हैं, और क्योंकि आप मजबूत हैं तो हर जगह आपको इस मजबूती की कीमत चुकानी पड़ती है। अब या तो बड़ा सस्ता और बहुत आसान सा उपाय है कि आप अपनी गर्दन हर जगह हिलाते रहें, ज़बरदस्ती हंस करके अपने दांत दिखाते रहें, यहाँ की वहाँ चुगली करते रहें, और बस इस तरह से आप अपनी जगह बैठे हुए लोगों के बीच में इधर उधर सबको गिटका के कहीं ना कहीं बना लेंगे, पर ज़मीर को आपको मारना पड़ेगा। और अगर आप सही रहेंगे, फर्म रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे, तो हर जगह चार पांच अलग अलग रूप की परेशानियां, शायद लोग, शायद अलग किरदार आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो चॉइस इज योर्स। एक रास्ते पे कांटे हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन कम से कम इतना सुकून है कि हमने गलत नहीं करा, हम गलत का साथ नहीं दे रहे हैं और हम गलत के खिलाफ खड़े हैं। पर अगर आप झूठ बोल के मुस्कुराना जानते हैं, जेब में हाथ डाल के, या फिर कहा जाए कि ऐसे ही यहाँ वहाँ देख करके, हाय हेलो करके, हर किसी के कंधे पे हाथ रख के सबसे ज़बरदस्ती का याराना बनाना जानते हैं, तो भी चॉइस आती है। पर मुझे लगता है उम्र के साथ हमें एक मैच्योरिटी आ जाती है बहनों, कि हमारा जो सर्कल है ना वो थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है। पहले हमारे खूब दोस्त होते हैं, हमारी सबसे बनती है, हम सबके आगे मुस्कुराते हैं, सबके यहाँ जाते आते, उम्र आने के साथ साथ
खूब अपने आप कम हो जाते हैं और बहुत चुनिंदा रहते हैं, और जो वो चुनिंदा होते हैं ना वो आपके होते हैं। तो आपको एक समझना पड़ेगा कि भीड़ जो होती है वो कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। सबसे जिनकी बनती है ना वो किसी के नहीं होते। जिनकी सबसे बन जाए वो बिल्कुल आलू की तरह होते हैं जो हर सब्जी में एडजस्ट कर लेता है। जिनकी कुछ लोगों से बनती है वो इस बात की गवाही देते हैं कि उनके पास अपना विजन है, अपनी सोच है, अपना सोचने का तरीका है, और जहाँ उनकी उनसे बनती है वो उन्हीं की सोच के लोग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको पसंद करे, ठीक है, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर कोई आपको जज करे और आप भी किसी को जज करें। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पसंद होती है। एक बहुत अच्छा सा कोट है, आई वॉज बॉर्न नॉट टू पास जजमेंट बट टू लव। आई वॉज बॉर्न नॉट टू पास जजमेंट बट टू लव, कि मैंने जन्म इसलिए नहीं लिया कि मुझे जजमेंट मिले, मैंने जन्म इसलिए लिया कि मुझे प्यार मिले। तो कोई और आपको प्यार करे या ना करे, आप प्यार बांटिए। जिसके पास कोयला होता है वो वही दे सकता है, जिसके पास गुलाम होते हैं वो वही दे सकते हैं। जो चीज़ किसी में है ही नहीं वो देगा कैसे? अगर आप में प्रेम है तो प्रेम बांटिए। कुछ लोगों में चापलूसी होगी वो बांटेंगे, किसी में नफरतें होगी वो बांटेंगे। सबकी अपनी पसंद है, ज़्यादा उलझन ही। वी आर नॉट परमानेंट हीयर, रिटर्न टिकट इज ऑलरेडी कन्फर्म। तो मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। अगले कार्यक्रम में आपके रेडियो सखी यानी मैं प्रीति भाटिया फिर आपसे मिलूंगी। ऐसी ही बात करेंगी, किसी दोपहरी में कुछ पल अपने लिए चुराएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए अलविदा, मुझे दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

FM बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज और फिर हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमेरिकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
5: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
6: उड़ीसा में तीन दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा अरिसा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेती बाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM 106.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे

0: आँखों ने आँखों को चूम लिया रे, आँखों ने आँखों को चूम लिया रे।
1: फिर क्यों ना पुकारो सनम सनम सनम सनम, फिर क्यों ना पुकारो सनम सनम सनम सनम।
0: ओ सनम ओ सनम ओ सनम।

0: मोहब्बत सुनाई अभी अभी दिल्ली खबर सुनाई
1: आंखों ने आंखों से कर ली सगाई आंखों ने आंखों से कर ली सगाई
0: अब शौक से कह लो सनम सनम।

0: जाने वाले चले गए, हम कहते रह गए सनम सनम सनम सनम, हम कहते रह गए सनम सनम सनम सनम, ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम।
1: नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज, फिल्म का नाम दर्द।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए, नेहा करकर देसाई को नमस्कार।

ये रुख सार के शोले ये बाहें मल।

रूप दिखलाए हमें आपकी आँखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें खुश हो बैठे तो जाना।

0: सखी सहेली सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
1: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
0: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में, मतलब ये एक गंभीर विषय है। हो सकता है हमें यूँ बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है।
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, इन खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है, और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े।
1: वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें मक्खन मलाइयों और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और अब क्या करना है?
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये,
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो आप सभी को इंतजार है कथा सुधा का,
0: तो मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग 3
0: जी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
2: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था, वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया, घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी, सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
3: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
4: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
2: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई, शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
1: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का 3रा भाग।
2: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, चार प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे, उस पर यह और मुसीबत हुई। मायके में एक फौजदारी हो गई, पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत।

0: आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती, चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल से ही मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
0: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
3: कहां से आती हो भैया?
1: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
3: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं, टुप्पू को उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
1: शीतला, बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
3: हाँ।
1: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
3: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे, मेरे पास है क्या? मैंने कहा, तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
4: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सांप काटे हैं। अरे, अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछ देती है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने।
3: हाँ, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
3: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
0: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
1: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
0: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
5: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
6: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
3: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
6: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
3: जी।
6: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
3: तो सुनते हैं एक गाना।

0: बहाना।
1: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार, है
0: और
1: ना?
0: दुगना होके मिलता है।
1: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है। क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
0: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल, लेते हैं।

0: घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है, उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है, उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे, या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं, तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं, अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ
0: काम कर रहे हैं,
1: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई, ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें परिवार में महत्व देना है, और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है, तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गाके दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है, दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात
0: ये
1: है,
0: तो बिल्कुल सही कहा, हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर

0: मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं, वृद्ध जनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्ध जनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्ध जनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज द्वारा की गई थी, और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की पहुंचार होती है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: आप क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है, लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए,
1: बहुत जरूरी
0: है। बिंदु है जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना, इससे पानी की बचत तो होती है साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा ना हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा
1: बढ़ जाता है। इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह है और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर और छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाएं।
0: बिल्कुल, एक साथी लिख रहे हैं बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और कार्तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, ना कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून की बारिश का हाल था।

0: नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए? आप एक गाना सुनिए।
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीज।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूरी हो, आलू की सब्जी हो,
1: तो आप और धाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाईयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाईयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?

0: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती
1: और
0: होगी।
1: वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है
0: हाँ
1: इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन
0: तभी ये
1: मलाइयों
0: खाया
1: खा के
0: जा
1: आएंगे,
0: सकता
1: क्योंकि
0: है।
1: उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
0: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
1: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना, हम हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं
0: हाँ,
1: वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना, वो कड़क
0: रहती
1: रहती
0: है।
1: हाँ,
0: जो खाने में भी मजा आता है।
1: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा आगरकर देसाई का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी
0: सही
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा

0: अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ होता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

0: मधुबनी खुशबू देता है।
1: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुनाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती है योग का?
2: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पाओ को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं हैं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
1: प्रतिकूल होता है,
2: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखने की एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। दो ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
1: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
2: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने ना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है, फास्टिंग हो गया है। तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है। तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
2: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
2: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए।
1: वाह,
2: आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्य उदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है। तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए। या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं

0: है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए, उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप कितनी सहमत है इस बात से?
0: देखिए कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती है, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द

के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली।

दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद

0: हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातःकाल का तो बताया था,
1: मैंने बताया कि 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने का हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है, पर नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कड़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं

0: भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग ही रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता
0: ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता है।
1: और कहा ये भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं
1: और कितना
0: खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी,
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: हंस कर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है,
1: दरिया को तो बहना पड़ता है।
0: हो तुम हो एक अकेले।

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की। विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिक्रिएशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास यही रहती है, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक
1: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या आप कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई है तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: अनुशासित टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि

0: घर में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: है।
1: सुनवाते हैं आपको अमृत फिल्म का ये गाना।
2: जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है, जिंदगी क्या

0: एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है,
1: मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं।
0: तो लंगड़ा बोला,
1: चलो चलो भाग चलते हैं।
0: तो भिखारी बोला,
2: अरे जल्दी करो
1: नहीं तो मैं लुट जाऊंगा।
3: जिंदगी क्या है, एक नसीबा है, जीने का यही बस तरीका है।
1: डुगडुगी बाजे डम डम डम डम, नाच बंदरिया छम छम छम छम।

0: मियाँ बीवी आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं,
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें

0: नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए, ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक की अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए कि रोज हमें कोशिश करनी। शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगी कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित करेंगी नहीं।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से, क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाएंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाएगा, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे

0: किए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
0: उठे सबके कदम देखो रम पम पम, सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो,
2: कभी खुशी कभी गम गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसो।

0: वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें
1: नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला जिंदगी के रास्ते मिलाए जब तक मेरे हमदम शबनम हम हैं और तुम शोला बन जाया करो
0: कभी खुशी कभी गम तारा रम बम बम हंसो और हंसाया करो
1: उठी सबके कदम देखो रम बम बम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम बम बम।

0: नया है रंग नया है जीने का तो जाने कहाँ ढंग गया है।
1: किसे है फिकर किसे क्या पसंद प्यार के जहाँ में रजामंद जब हम तुम
0: हम बन गए हैं कलम बेधड़क मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम सारा रम पम पम हंस और हटाया करो
1: उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो
0: कभी खुशी कभी गम सारा रम पम पम हंस और हटाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो
1: कभी खुशी कभी गम सारा रम पम पम हंस और हंस

0: शबनम हम हैं और तुम शोला बन जाया करो,
1: कभी खुशी कभी गम तारा रम बम बम, हंसो और हंसाया करो,
0: उठी सबके कदम देखो रम बम बम, हजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम बम बम।
2: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है, आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए, फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो और खाने के बाद जैसे अब हम वहाँ पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको, आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
2: और फिर से अपना काम करें।
3: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
2: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान मत करो,
3: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
2: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
3: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
2: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
3: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिससे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: हाँ, मन।
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पर भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR

आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 है, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाली सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है, यूं कह सकते हैं कि हमारे जो हम जिनकी छत्र छाया में रहते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग या हमारे घर की नींव भी उसी से हम कह सकते हैं, क्योंकि आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये हर साल 15 जून यानी आज ही के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है और हम ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार और उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में उनके अधिकारों और सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाना। हम जैसे बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों को अक्सर अपने ही परिवारों या यूं कह सकते हैं देखभाल करने वालों द्वारा जो है बहुत प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। शारीरिक दुर्व्यवहार की अगर हम बात करें तो मारपीट करना या धक्का देना या समय पर दवा न देना, ये सब चीजें आती है फिजिकल एब्यूज में। और इमोशनल एब्यूज यानी कि मानसिक या फिर भावनात्मक दुर्व्यवहार की बात करें तो उन्हें अपमानित करना या फिर धमकाना, अकेला छोड़ देना, आर्थिक शोषण भी कई जगह देखने को मिलता है। बुजुर्गों की संपत्ति, पेंशन या पैसों पर जबरन कब्जा कर लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा करना यानी उन्हें नेगलेक्ट करना, उनके भोजन, कपड़ों और स्वास्थ्य और जरूरत पर उनकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। दोस्तों, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की अक्सर जो है रिपोर्ट दर्ज हम सुनते रहते हैं कि कई जगह पे ऐसा कुछ हुआ है। कई पीड़ित शर्म या डर के कारण चुप रहते हैं। ये दिन हम कह सकते हैं परिवारों, समुदायों और सरकारों को याद दिलाता है कि वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित, गरिमामय और प्यार भरा माहौल प्रदान किया जाए। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानूनी अधिकार और योजनाएं भी बनाई गई है। दुर्व्यवहार की स्थिति में मदद या शिकायत दर्ज करने की भी बहुत से तरीके हैं। हम कह सकते हैं कि कानूनी प्रावधान जो है वो बहुत है भारत देश में। भारत सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी जो है चलाई जा रही है ताकि किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, उन्हें इस तरीके की यातनाएं जो है वो झेलनी ना पड़े। जैसे हमने बताया कि भाई शारीरिक दुर्व्यवहार कई बार जो हम सुनते हैं किसी के थ्रू या सोशल मीडिया में भी कई बार ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट की जाती है, तो कई तो बुजुर्ग जो है वो इस कारण से कि नहीं परिवार के सदस्य हैं या मेरा बेटा है या मेरी बहू है, क्या होगा उनके साथ अगर मैंने शिकायत दर्ज करा दी, ये सोच करके जो है वो चुप रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उनके साथ ये दुर्व्यवहार जो हो रहे हैं, ऐसे दुर्व्यवहार ना हो, इसीलिए ये दिवस जो है मनाया जाता है, जागरूक किया जाता है लोगों को कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग ही हैं जो हमारे हम में और हमारे बच्चों में, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें संस्कार डालते हैं, उन्हें हमारी संस्कृति से जोड़े रखते हैं, हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। और कहते हैं ना, घर में अगर नाना नानी दादा दादी होते हैं तो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और बच्चे जो हैं उन कहानियों के जरिए जो है कितनी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। उसमें किसी की मदद करना हो सकता है, बड़ों का सम्मान करना हो सकता है, छोटों को प्यार देना हो सकता है, अपने माता पिता का किस तरह से सम्मान करें, बहुत सी चीज़ें जो है कहानी कहानी में ही बच्चों को सिखा दी जाती है। और वो जो सिखाते हैं वो है हमारे घर की बड़े बुजुर्ग, तो इसीलिए उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है हम दोस्तों के साथ बैठते हैं या फिर कोई ऑफिस कलीग्स आते हैं और उनके सामने अगर हमारे माता पिता कुछ कहते हैं तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है अपने माता पिता के साथ तो वो उनका दुर्व्यवहार ही तो हुआ। कहने को तो नहीं, हम हमारे माता पिता को हमारे साथ रखते हैं, उन्हें अच्छा खान पान दे रहे हैं, उन्हें अच्छे कपड़े दे रहे हैं, और चाहिए क्या? नहीं, उन्हें चाहिए सम्मान, उन्हें चाहिए आपका प्यार, उन्हें चाहिए आपका समय।
जो आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय है जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि बचपन में जब आपको उनकी जरूरत थी तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, और जब अब उन्हें आपकी जरूरत है तो आपके पास समय नहीं है, ये कहना बहुत गलत होगा। अपने पूरे दिनचर्या में ऐसा समय निकालिए जब आप अपने माता पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ घर के, उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, हर चीज़ के बारे में बात करें, अपनी दिनचर्या उन्हें बताएं, उनकी दिनचर्या सुने। और कभी कोई तकलीफ में अगर आप हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको मतलब वर्ल्ड की बेस्ट एडवाइस जो है, अगर कहीं से मिल सकती है तो वो वहीं से मिल सकती है। और उनका सपोर्ट, उनका सहारा और उनका आशीर्वाद ही रहेगा जो आपको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, आपके जो आपको कामयाबी चाहिए वहां तक आपको जो पहुंचाने की अगर किसी में हिम्मत है, तो वो हमारे माता पिता के आशीर्वाद में है, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद में होता है। और जैसे कई घरों में तो बुजुर्गों को, जैसे हमने बताया कि हर चीज़ दी जाती है लेकिन समय नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता, वो गलत है। और कई जगह पर बुजुर्गों को सिर्फ और सिर्फ उनकी, हम कह सकते हैं, पेंशन या पैसों के लिए जो है वो रखा जाता है। मतलब जैसे ही पेंशन आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, वो रख लिए जाते हैं और बुजुर्गों को है उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो ये भी बहुत गलत है।

छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि यही वो बरगद की छांव है जिसमें हम बड़े हुए हैं और हमने हर परिस्थिति को हंसते हुए देखा है, झेला है, क्योंकि हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया रहती है। हमारे माता पिता जो होते हैं, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हर कठिन परिस्थिति में हमसे आगे खड़े रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की कठिनाई हो, किसी भी तरह की असुरक्षा हो, वो उनसे होकर आए, ताकि हम तक पहुंचने से पहले जो है वो वहीं समाप्त हो जाए। तो इसीलिए हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना हम सबका फर्ज है, हम सबका कर्तव्य है। और वरिष्ठ नागरिकों को भी हम कहना चाहेंगे कि आपके पास भी कानूनी अधिकार हैं, सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप उनका लाभ उठाएं, कानूनी अधिकार हैं उनका लाभ उठाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार ना कर सके। चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।

0: आए हर घर अपनी गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
0: गली गली आवाज ये जाए हर घर अपनी गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
0: गली गली आवाज ये जाए हर घर अपनी गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
3: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों आइए अब हम सुनते हैं भेंट वार्ता। परीक्षाओं में विद्यार्थी अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, अपराजिता सिंह भाटी से श्यामवीर सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं हम युवाओं के लिए कुछ ऐसे विद्यार्थियों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो और वो आपके लिए आदर्श बने। आज हमारे साथ हैं अपराजिता सिंह भाटी और इन्होंने 12th में 91% अंक हासिल करके खुद को गौरवान्वित किया, अपने परिवार को और जैसलमेर को भी। आज हम इनसे जानेंगे कि युवा किस प्रकार तैयारी करें और कैसे वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम हमारी जो युवा एक छात्र हैं अपराजिता सिंह भाटी, हम आपका स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं वहाँ से कि शुरुआत से ही आप प्रतिभाशाली थी या बाद में आप मेहनत करके आप यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया है, तो वो जब आप 5वीं 6वीं क्लास से ही हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ से शुरुआत हुई, तो कह रही थे वहाँ पढ़ाई में उस समय कैसी थी?
4: सबसे पहले तो मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी मैंने 9वीं कक्षा से, मेरे नाना जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा। मेरे नाना जी ने 9वीं कक्षा से ही भाषण निबंध जिसमें भी मैं भाग लेती थी उसमें मेरी सहायता प्रदान की और मेरे मम्मी पापा मेरे सभी घर वालों ने मुझे पूरा योगदान दिया ताकि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं। और तभी से ही मैंने भाषण निबंध करना शुरू कर दिया और वहाँ पर मैंने बहुत सारे भाषण निबंध किए जिससे मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता गया। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे पूरे परिवार का, खासकर मेरे नाना जी का, मेरे इतनी सहायता की।
3: अच्छा, शुरुआत में आप पढ़ाई में कैसे थे? 5वीं 6वीं क्लास में जब थे तो क्लास में आप कौन से स्थान प्राप्त करते थे, वो थोड़ा समय बताइए।
4: शुरुआत मैंने चाणक्य विद्यापीठ से की है और मैंने शुरुआत से ही मैं पढ़ाई में होशियारी थी।
3: तो जो क्लास में जैसे बच्चे होते हैं एक क्लास में 50-40-50 बच्चे, उसमें कौन सा स्थान प्राप्त करते थे आप उस समय?
4: स्थान मेरे दूसरा तीसरा आता था उस टाइम।
3: अच्छा, दूसरा तीसरा स्थान आपका, यानी शुरुआत में जो बेस बन जाता है विद्यार्थियों का, आगे चल करके वो विद्यार्थियों के कैरियर में बड़ा काम आता है। और जो विद्यार्थी, देखिए दो तरह के विद्यार्थी हमने देखे हैं, एक तो शुरू से ही प्रतिभाशाली होते हैं, एक मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो आपने दूसरे तीसरे स्थान से और यहाँ 91% तक अंक लाना, यानी निरंतर आप अपने स्तर को आपने बनाए रखा। आपके जो कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं जो छात्र हैं अभी जो 12th कर रहे, कुछ 10th कर रहे होंगे और आने वाले समय में उनको एग्जाम भी देनी है, तो आपकी जो पढ़ाई का जो समय होता था वो कैसे तय करते थे, कितना पढ़ाई करते थे और जो स्कूल से पढ़ाई जो करके आते थे उसका रिवीजन, मतलब तैयारी किस प्रकार से करें छात्र हमारे कि वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें?
4: बच्चों को अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब भी मैंने मेरा टाइम टेबल ये होता था कि मैं एक बार गर्मियों की छुट्टियों में पूरा एकदम कोर्स इतना एक बार से निपटा देती, उसके बाद में जैसे जैसे स्कूल में पढ़ाई होती थी तो उसके साथ साथ रिवीजन करते जाती थी। स्कूल से वापस आने के बाद घर पर टाइम नहीं मिलता था,
3: बिल्कुल,
4: इसीलिए वहाँ पर पहले एक बार अपना पूरा कोर्स करके और बाद में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर ले, या फिर जिसको जल्दी उठने की आदत हो सुबह जल्दी उठकर थोड़ा थोड़ा कम्प्लीट करे। बहुत से बच्चे होते जो रात को लेट सोते हैं तो रात

0: को देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं।
1: अच्छा देखिए, एक तो स्कूल से पढ़ के आते हैं और फिर घर पे यदि कोई पढ़ाने वाला हो, कहीं हेल्प मिल जाए तो बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा साबित होता है। क्या आपके घर पर कोई हेल्प करने वाला था?
0: जी, मेरे घर पर मेरे पूरे सारे मम्मी पापा ताऊ जी दादी सब हेल्प करते थे, और सबसे ज्यादा सहयोग मेरे मामा जी ने, मासी जी ने और नाना जी ने किया था। मैं सबसे ज्यादा सहयोग इन्हीं का रहा था।
1: बिल्कुल। और आपका जो सपना रहा होगा कि हम पढ़ने के बाद में क्या बनना है, तो छात्रों से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निरंतर पढ़ाई ही आपको आगे लेके जाएगी। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया। तो आप जब से, आप जैसे 5वीं 6वीं क्लास से आपने निरंतर मेहनत की और 12th तक आपने अपना स्तर को बनाए रखा है, जो छात्र सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप, आपके एक बार नंबर कम आ गए, अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता है तो आप आगे बढ़ोगे। और आप भी, जो हमारे जो छात्र हैं अपराजिता सिंह जी, उन्होंने जो अपना स्तर बनाए रखा है, ऐसे आप भी बनाए रख सकते हो। अच्छा, जो सपना होता है एक पढ़ने के बाद में हमें एक कहाँ जाना है, क्या बनना है, आपका भी कोई सपना रहा क्या?
0: जी, मेरा यही सपना है। मेरी मासी जी जो है श्रीमती पंकज पवार, वो अभी प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे रही है, इसलिए मेरा भी यही सपना है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। आगे मेरा मेहनत और मेरे भाग्य कहाँ ले जाता है, बाकी मेरी पूरी वही कोशिश रहेगी।
1: बिल्कुल। देखिए, जो प्रशासनिक सेवा एक चुनौती होती है और उसमें जो लोगों की सेवा करने का जो मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं संतुष्टि देता है। और ये भावना मुझे लगता है कि अगर कोई महिला उस पद पे बैठती है तो महिलाओं में जो नेचुरल जो सहयोग करने की भावना होती है, सेवा करने की भावना होती है, उससे प्रशासन में जो कि कुशलता आती है, निरंतरता आती है और अच्छा भी चला चलाती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में हैं, उच्च पदों पर पहुंची हैं। वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं जो सर्वोच्च पद पर हैं, वो भी हमारी जो देश की महिलाएं उनके लिए उदाहरण है। और वो भी कई बार कह चुकी हैं कि आज हमारी आधी आबादी यूं कहें कि विकास के क्षेत्र में जुड़ रही है, तो देश तेजी से विकास कर रहा है। हम बात करते हैं जैसे कि लड़कियों की और लड़कों की। देखिए, आज भी हमारे जो गांव का स्तर है, गांव में जाएं तो लड़कियों को अभी भी पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर रखा जाता है, या स्कूल दूर होता है तो उनमें जाने में दिक्कत होती है। तो आप क्या सोचते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह बिल्कुल छूट होनी चाहिए, वो भी सक्षम है खुद को आगे बढ़ाने के लिए? आप क्या, आपकी क्या राय है कि बच्चों को कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, खुली छूट दे देनी चाहिए? आप खुला आसमान में उड़िए और अपना मुकाम तय करिए।
0: जी, मेरा भी यही है ख्याल है कि बच्चियों को पूरी छूट देनी चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, या फिर उन्हें कहा जाता है कि घर के काम ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी लड़कों जितना काम कर सकती है। ये टाइम हम देखें तो लड़कियां लड़कों से भी आगे कई क्षेत्र में निकल चुकी है, इसीलिए लड़कियों को पूरी पढ़ाई की छूट देनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे भी लड़कों से भी ज्यादा होती है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। छूट तो मिले लेकिन संरक्षण में, अगर माता पिता का संरक्षण में उनको छूट मिलती है तो लड़कियां निश्चित रूप से आगे जाएंगी और आगे जा भी रही हैं। देखिए, आज हम बात करें इसरो की, इसरो में सर्वाधिक हमारी जो वैज्ञानिक हैं वो भी महिलाएं हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाएं नहीं हो, पायलट भी हैं। और जैसे कि आपने भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में भी गई हैं, तो महिलाओं ने वो काम करके दिखाए हैं जहाँ पर कई बार पुरुष भी नहीं कर पाए, ऐसे काम भी हैं काफी। अच्छा, जो आने वाला समय है, अब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो पढ़ाई का जो स्तर होगा, क्या सोच के पढ़ाई करेंगे? जैसे आपने एक बात तो कही कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियां मुझे लगता है कि कॉलेज से पूर्व भी कर देनी चाहिए। क्या आपने अभी से तैयारी शुरू की है?
0: जी, बिल्कुल। प्रशासनिक सेवा, या फिर मैं सोचती हूँ कि जिस भी लक्ष्य के आप बचपन से सोच कर बैठे हैं, उसकी तैयारी हमें स्कूली शिक्षा से के साथ साथ ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उसको पाने में हमें सफलता थोड़ी आसानी से मिल सके। अगर हम लेट से लेट ज्यादा करते जाएंगे तो वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा कठिन होता जाएगा, इसीलिए हमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
1: अच्छा, आज के समय में जैसे हम बात करें, एक समय ऐसा था कि बच्चे तैयारी तो करते थे लेकिन पढ़ाई के लिए किताबें नहीं खरीद पाते थे, बहुत सारी मुश्किलें थी। आज समय ऐसा आ गया है कि अगर कोई ठीक से तैयारी करना चाहे तो उनके लिए बहुत सारा मटेरियल, उनके मोबाइल के अंदर है, उनके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो चाहे।

0: मिल सकता है। और अगर वो और बेहतर तैयारी करना चाहें तो आज के युवा, मुझे लगता है कि AI भी इस कार्य में अच्छा साबित हो सकता है। क्या आप हमारे युवा हैं, आप हो, क्या AI के बारे में आपको पता है, क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: जी, AI का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका यदि हम सही रूप में उपयोग लें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, सफलतापूर्वक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है और ये हमें सही की जानकारी भी देता है। तो उस हिसाब से AI का यदि हम सही रूप से इसका सदुपयोग करें तो ये हमारे लिए सही रह सकता है, लेकिन हम इसका गलत रूप से करें तो ये नहीं रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए AI अभी यूँ कहें कि प्रारंभिक दौर में है, अगर इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहेंगे तो अभी शायद विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो भी AI का इस्तेमाल करें उसको कंफर्म कर लें ये जो जवाब आ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो आप जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे अच्छा जो आज का माहौल है पढ़ाई के लिए, हम यूँ कहें कि पूरे भारत में जिस तरह से भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सबको बराबरी का मौका मिल रहा है। अच्छा, जो छात्र हैं जो कई बार के नंबर कम लाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़ें, निराश ना हो? तो जो बच्चे आपके साथी हैं उनके लिए कुछ बताइए आप।
1: मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी जो 12th में 91% है तो मैं भी इससे बहुत दुखी थी, क्योंकि मुझे आशा बहुत ज्यादा की थी कि ज्यादा आएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज की आशा रखते हैं वो हमें नहीं मिल पाती है। इसे निराश होने की कोई बात नहीं होती, क्या अगर हम आगे मेहनत करेंगे तो हम आगे और सफलता प्राप्त करेंगे।
0: बिल्कुल, मेहनत से ही सफलता मिलेगी, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जहाँ भी जैसे आप कॉलेज या स्कूल में जाते हो, तो जो हमारा युवाओं को जो पढ़ाई की मतलब जो पढ़ाते हैं हमारे अध्यापकगण, तो क्या वो पर्याप्त रहता है, या उनको जैसे आजकल बहुत सारी कोचिंग भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं, क्या उनकी मदद आपने भी ली थी या सिर्फ स्कूल या कॉलेज से ही आपने इतने नंबर प्राप्त किए?
1: नहीं, मैंने स्कूल के साथ कोचिंग भी ज्वाइन की थी, वहाँ पर भी पढ़ने जाया करती थी, लेकिन 11th 12th मैंने अपने पूरी घर पर ही पढ़ाई की और सिर्फ स्कूली शिक्षा से की।
0: मतलब घर पर पढ़ाई करके भी अगर कोई चाहे तो अच्छा पढ़ाई में अच्छा स्तर प्राप्त कर सकता है, और निश्चित तौर पर जब पढ़ाई में स्तर अच्छा होगा, आगे की तैयारी भी अच्छी होगी, तो मनचाहा जॉब भी मिलेगा और भारत के जो प्रशासनिक सेवा हैं आप उसमें जाना चाहते हो, आपको वहाँ मौका मिलेगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो आपका स्वप्न है वो पूरा हो। और युवा साथियों, आज हमारे साथी एक युवा छात्र अपराजिता सिंह भाटी, और इन्होंने 12th में 91% अंक प्राप्त करके जैसलमेर को गौरवान्वित किया, अपने परिवार को किया है। तो आज इनके अनुभव से ने किस प्रकार से ये आगे बढ़ी हैं, और मुझे लग रहा है कि ये बातचीत आपको आपकी पढ़ाई में सहयोग करेगी और आपका हौसला बढ़ाएगी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, परीक्षाओं में विद्यार्थी अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, अपराजिता सिंह भाटी से श्यामवीर सिंह की बातचीत। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

परिवार को जन्म देने वाला अपने पेड़ से उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा यही साया उसके काम

अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन और ऋचा शर्मा की आवाजों में बागबान फिल्म का ये गीत। अब समय हो चला है हमारे विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स का।

यह हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स, जी हाँ, जिसमें हम देश दुनिया की ताज़ा खबरों के बारे में आपको आपसे साझा करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। और करंट अफेयर्स का मतलब यही है कि जो घटनाएं फिलहाल घट रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए है, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अपने करंट में, यानी कि अभी हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है, हर तरह की खबर होने की जानकारी होने की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करें हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स, और जिसमें सबसे पहले हम बात करें हैं भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और समझौते के बारे में। जी हाँ, हाल ही में भारत और फ्रांस ने 13 प्रमुख समझौतों की घोषणा की है। भारत और फ्रांस ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, अंतरिक्ष और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 13 प्रमुख परिणामों की घोषणा की। इन पहलों में भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप 2030 को अपनाना और फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का विस्तार करना भी शामिल है। इसके बाद हम बात करें विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% है। जी हाँ, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत मजबूत निवेश और सेवा क्षेत्र की बदौलत आने वाले वित्त वर्ष में अपनी आर्थिक वृद्धि बनाए रखेगा। और जी हाँ, अब बात हमारी अपनी राजस्थान की, जैसलमेर की। जी

हाँ, राजस्थान में डिजिटल और तकनीकी पहल। हाल ही में अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री ने जैसलमेर में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया और इसके साथ ही जयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की थी, घोषणा की। वैश्विक मंच पर भारतीय स्टार्टअप। विश्व आर्थिक मंच के 2026 टेक पायनियर्स कोहार्ट में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। जी हाँ, इस प्रतिष्ठित सूची में दुनिया भर की 100 शुरुआती चरण के स्टार्टअप चुने गए हैं, जिनमें भारत की 9 कंपनियां शामिल हैं। अब बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, किसानों को 24 घंटे AI संचालित सलाह प्रदान करने के लिए ICAR द्वारा हाल ही में ऑयल सीड्स किसान मित्र ऐप या पहल जो है वो लॉन्च की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को तिलहन की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी और 24/7 सहायता प्रदान करने के लिए इस AI संचालित पहल की शुरुआत की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा हाल ही में बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल मध्यम दूरी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। जी हाँ, 11 जून 2026 को DRDO ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करते हुए बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल मध्यम दूरी का पहला उड़ान परीक्षण भी संपन्न किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता मौजूद है। रिटेल सप्लाई चेन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स संस्था द्वारा डिजी दुकान पहल शुरू की गई। जी हाँ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने डिगी दुकान नाम की एक नई पहल की शुरुआत की है। ये पहला खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और ब्रांडों को डिजिटल रूप से जोड़कर रिटेल सप्लाई चेन की दक्षता में सुधार लाने के लिए डिजाइन की गई है। हाल ही में भारत देश ने 2026 के लिए अपना नया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत ने वर्ष 2026 के लिए अपना नया AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में AI का सुरक्षित, नैतिक और जवाबदेह तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि GDP वृद्धि दर जो है 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश या असम के जंगलों में खोजी गई टोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा तितली की एक नई प्रजाति है। जी हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता वाले क्षेत्र में टोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली की एक बिल्कुल नई प्रजाति की खोज की है। ये खोज भारत की समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमाण भी है। दोस्तों, 9 जून 2026 को भारत का 75वां संविधान दिवस मनाया गया दिल्ली में। जी हाँ, राष्ट्रपति ने संसद भवन में संविधान दर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 2026 में 75वीं सालगिरह मनाएंगे। जून 2026 में गंगा सफाई पखवाड़ा जो है 10 जून से 25 जून तक मनाया जा रहा है। जी हाँ, नमामि गंगे मिशन के तहत हर साल जून में पखवाड़ा चलता है और हर वर्ष इसकी एक थीम रखी जाती है। 2026 की थीम है जन भागीदारी से निर्मल गंगा। स्कूल कॉलेज के बच्चे घाटों की सफाई भी कर रहे हैं। 11 जून 2026 को भारत नेपाल के बीच जो है बथनाहा बिदाट नगर नया रेल कॉरिडोर शुरू हुआ है। बिहार के बथनाहा से नेपाल के बिराट नगर तक 18.6 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन का उद्घाटन हुआ। इससे नेपाल की पूर्वी हिस्से की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। जून 2026 में फसाई ने
सिंगल यूज प्लास्टिक 120 माइक्रोन प्लास्टिक पर बैन को 1 जुलाई 2026 से सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, और अब जो है 120 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कटलरी पर पूरी तरह से रोक है और उल्लंघन करने पर लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की अगर हम बात करें तो 12 जून 2026 को इसे नई दिल्ली में मनाया गया। श्रम मंत्री ने बाल श्रम मुक्त भारत 2026 अभियान लॉन्च किया और जिसकी थीम रही एजुकेशन इज द की टू एंडिंग चाइल्ड लेबर, और 10 लाख बच्चों को स्कूल में जोड़ने का टारगेट भी रखा गया। जून 2026 में गुजरात राज्य ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया। जी हाँ, गुजरात सरकार ने 13 जून को 5,000 ड्रोन दीदी को सर्टिफिकेट दिए। ये महिलाएं अब खेती में दवा बीज छिड़काव करेंगी और 15,000 महीना कमाएंगी। बात करें 13 जून 2026 की तो भारत और ओमान देश के बीच अल नजा 4 सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू हुआ। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ओमान संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ। आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और रेगिस्तानी युद्ध की ट्रेनिंग होगी। 14 जून 2026 को विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो मनाया गया और इस वर्ष इसकी थीम रही 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग। WHO ने 20 साल पूरे होने पर 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थीम रखी और भारत में 14 जून को 2 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन का टारगेट भी रखा गया था। जून 2026 में भारत का पहला AICT जो है हैदराबाद तेलंगाना बना है। जी हाँ, तेलंगाना सरकार ने 14 जून को 200 एकड़ में फ्यूचर सिटी का शिलान्यास किया। यहाँ AI डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी कंपनियां होगी और इसका निवेश लगभग 40,000 करोड़ होगा। जून 2026 में मिशन कर्मयोगी के तहत जो है 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 15 जून को DOPT ने रिपोर्ट दी। 2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों ने IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पूरी की। इसी के साथ ये था हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं योग और प्राणायाम की। जी हाँ, योग और प्राणायाम भारत की 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला विज्ञान है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आत्म साक्षात्कार, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो। जी हाँ, योग का इतिहास सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से लेकर वेदों और उपनिषदों तक फैला हुआ है। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को पहला योगी और गुरु माना जाता है, यानी कि उन्हें आदि योगी कहा गया। भगवत गीता की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय कर जीवन जीने की कला सिखाई है। महर्षि पतंजलि की अगर बात करें तो इन्होंने योग को व्यवस्थित रूप दिया और अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब की नींव रखी। और अगर हम प्राणायाम से जैसे बात करें तो प्राण और ऊर्जा का नियमन है ये। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण यानी कि जीवन ऊर्जा और आयाम यानी कि नियंत्रण, यानी कि आप श्वास का नियंत्रण के माध्यम से जो मन है उसे शांत कर सकते हैं। भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सभी प्रमुख जो है प्राणायाम है जो तंत्रिका तंत्र को संतुलित करते हैं। ये शरीर में प्राण वायु का प्रवाह बढ़ाते हैं जिससे आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। दोस्तों सांस्कृतिक रूप से ये हमें प्रकृति के करीब लाता है और मानवीय मूल्यों, सत्य, अहिंसा और संतोष को बढ़ावा देता है। आज ये वैश्विक स्तर पर भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन है। जी हाँ, योग दर्शन और अभ्यास जो है वो हम पूरी देश दुनिया में जो है भारत ने इसे बढ़ावा दिया है और इसीलिए जो है हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। और योग को हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है और इसकी उत्पत्ति ही हमने जैसे बता दिया कि हजारों वर्ष पूर्व हुई है, और ऐसा माना भी जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई तभी से योग किया जा रहा है। मतलब प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका। योग विद्या में जैसे हमने बताया कि शिव जो कि आदि योगी आदि गुरु माने जाते हैं, भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार भी दिया, और इसके बाद जैसे हमने बताया कि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। दोस्तों योग जो है इससे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से अगर हमें निरोग रहना यानी सारे रोगों को दूर भगाना है हमारे शरीर से, तो इसके लिए योग ही सबसे प्रमुख और अच्छा साधन है। क्योंकि कहते हैं कि योग रखे निरोग, और योग की जो काया होती है यानी कि जो हम योग करते हैं इससे हमारा मन भी शांत रहता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें भी योग और प्राणायाम जो है इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम फिर से चल रहे हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुन रहे हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और सुखविंदर की आवाज़ों में भूतनाथ फिल्म का ये गीत। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर एफएम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

आज के लिए मैं ये समझती हूँ।

ये थे आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में विवरण। हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गान।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सपनी जन पे तुम राधा।

0: पंख है कोमल।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं समाचार। पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम जयपुर केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।
2: मुख्य समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बागड़े आज सीकर के जसरासर में शहीद स्मारक में शहीद गोवर्धन सिंह ढाका की प्रतिमा अनावरण के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सीकर, झुंझुनू और नागौर सहित शेखावटी क्षेत्र के जवानों का देश की तीनों सेनाओं में विशेष योगदान है। राज्यपाल ने शहीद गोवर्धन सिंह ढाका के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आज भारत दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में रिकॉर्ड निवेश आया है और व्यापक बदलाव हुए हैं।
3: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ी, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। हमारा

0: मुख्य कार्यक्रम के साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों में योग सत्र आयोजित करने की योजना है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक तथा विशेष योग्यजन को सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र में लगाए गए शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये शिविर सरकार की सुशासन और जनसेवा की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने शिविर में आवेदकों से संवाद भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाए।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं। 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि गांव स्तर पर पहुंचे और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है, इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से भी स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज भरतपुर और डीग में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सलोम्बर जिले में कल इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शहरी सेवा शिविर नगर परिषद क्षेत्र में लगाया जाएगा, वहीं ग्रामीण सेवा शिविर कई ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डोंगरगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर आज एक कार और डंपर के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल है। हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज जारी है। कार में सवार ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और बीकानेर के मुकाम से वापस हरियाणा जा रहे थे। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए नागौर के अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत का आज उनके पैतृक गांव पांचोटा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाई गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौर ने खेमाराम कुमावत की देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ और कोटा की टीम ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर देवरी गांव के पास एक कंटेनर ट्रक से 2000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया। कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था। प्रदेश में बच्चों को दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए कल से राज्यव्यापी स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान के तहत विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, साफ पीने का पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि देश में डायरिया आज भी बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी

0: एक गंभीर चुनौती है। गर्मियों और बारिश के मौसम में बच्चे दस्त रोग से अधिक ग्रसित होते हैं और उपचार नहीं होने पर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार की थीम पर गतिविधियां आयोजित होंगी।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है, शुद्ध पेयजल का सेवन, साफ सफाई, स्वच्छता, इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे इसमें UDH हो गया, PHED हो गया और पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा, अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली, ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक PAM का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस माह की बैठक का मुख्य विषय पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रहा। विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास के लिए जन जागरूकता को नई गति देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए परिवारों की सहभागिता को और खासतौर पर पिता की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में आज कहीं आंधी चली तो कहीं हल्की सी मध्यम बारिश हुई। हनुमानगढ़ में सुबह अंधड़ के बाद तेज बरसात हुई जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। झुंझुनू में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कई जगह तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। चूरू और डीग में आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राज्य के कई अन्य पूर्वी जिलों में भी आंधी और तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। इन गतिविधियों से पूर्वी हिस्सों में पारा गिरा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भी उमस और गर्मी का असर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अगले 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। देश भर में 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू हो जाएगा। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा जिसे आवश्यकता और मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। इस तरह राजस्थान में इस योजना के लिए कुल 11,581 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी जो प्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, राजस्थान के शूरवीरों ने प्राचीन काल से ही देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। और प्रदेश में बच्चों को दस्त से बचाव और उपचार के लिए कल से स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख हरीश पालीवाल ने तैयार किया है। उदयपुर जिले में इन दिनों मानसून की आहट के साथ पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी है। वहीं जिले में जल संरक्षण, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण, प्रशासनिक गतिविधियां और जन सरोकारों से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम दूध तलाई क्षेत्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव टी रविकांत, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। इसके बाद प्रभात फेरी और कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। उदयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग

0: शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पेयजल प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद और बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। मॉनसून के आगमन से पहले उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक प्रमुख ट्रेवल पोर्टल द्वारा जारी भारत के शीर्ष 15 मॉनसून पर्यटन स्थलों की सूची में उदयपुर को देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। राजस्थान से केवल उदयपुर और माउंट आबू ही इस सूची में शामिल हुए हैं। सूची में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। मानसून के दौरान पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और स्वरूप सागर झीलों के भरने के साथ अरावली क्षेत्र का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। सज्जनगढ़ स्थित मानसून पैलेस से झीलों, पहाड़ियों और बादलों का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उदयपुर ने मानसून पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने और बड़ी आबादी को न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग रखी गई है। उदयपुर की बेटी खुशी ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनकर मेवाड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में प्राप्त की और बाद में बीएन विश्वविद्यालय से बीसीए की पढ़ाई की। खुशी ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास कर एसएसबी चयन प्रक्रिया पूरी की और हैदराबाद में पायलट प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका गणतंत्र दिवस परेड के लिए भी चयन हो चुका है। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एमबीबीएस, एमडीएमएस तथा विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपलब्धियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई। विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब जिराफ लाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। वन विभाग द्वारा जिराफ के लिए विशेष एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सेंचुरी क्षेत्र में बनाए जा रहे इस परिसर में पर्यटकों के लिए पाथवे और जिराफ के लिए अलग होल्डिंग तथा डिस्प्ले एरिया विकसित किया जा रहा है। परियोजना पर करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत नर और मादा जिराफ का जोड़ा उदयपुर लाया जाएगा। जिराफ के आने के बाद वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आज औपचारिक कार्यक्रम री शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री श्री डूंगरगढ़ माए भया सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा 6 जना री मौत। और प्रदेश में बच्चा ने दस्त को बचावन और इलाज सारू काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चा वेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सीकर जिला रा जसरासर माए शहीद गोवर्धन सिंह ढाका री मूर्त रो अनावरण कीनो। ई मौके श्री बागड़े शहीद गोवर्धन सिंह ढाका रा बलिदान ने याद करता थका कहो कि हमारी शहादत आवती पीढ़ियां ने हमेशा सीख देवेला। राज्यपाल कहो कि राजस्थान शूर वीरां री धरती रही है।

0: कहो कि नागौर सीकर और झुंझुनू समेत शेखावाटी हलका रा जवान देश री हिफाजत रा काम माए मोटो योगदान दीनो है। राज्यपाल कार्यक्रम माए शहीद रा परिवार वाला रोई मान कीनो और स्मारक परिसर माए पौधा रोपया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि भारत मजबूत भरोसाओं भरिया देश रा तौर सामने आ रो है। वे आज जोधपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा 12 साल रा कामकाज री उपलब्धियां रो जिक्र कीनो। शेखावत कहो कि भारत दुनिया री उम्मीदां रो केंद्र बन गयो है और साल 2047 ताई विकसित देश बनवाओड़ी तेजियों बढ़ रियो है। वह कहो कि लाड़ला 12 साल माए देश माए जबरदस्त निवेश आयो है और मोटा बदलाव आया है।
1: भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति के साथ में बढ़ी, हमारा एक्सपोर्ट सस्टेन कर, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी आज हमारा हर क्षेत्र का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट कंपैरेटिवली कम हुआ है इतनी वैश्विक चुनौतियों के बाद में भी, और हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो भी पॉजिटिव साइड में 0.7% की अभिवृद्धि उसमें हुई है। आज भारत सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
0: 21 जून ने मनाया जावन वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए आयुष मंत्रालय री ओर आज नई दिल्ली माए औपचारिक कार्यक्रम शुरू करी चिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ जीवन के लिए योग राखी चियो है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने बतायो कि योग दिवस रो खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता रा रेड रोड माथे रखियो जावेला। वे बतायो कि इन मौके 45 मिनट रो योग प्रोटोकॉल रखियो जावेला। खास कार्यक्रम सा गई हुगली नदी माए 500 नावा माए योग सत्र रखण री योजना है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर राज सांगानेर माए लगाई गया शहरी सेवा शिविर रो दौरो कीनो। वह शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कर सरकार कानून जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रा बारा माए जानकारी हासिल कीनी। मुख्यमंत्री पात्र लोगों ने पट्टा सर्टिफिकेट मदद री रकम रा चेक और विशेष योग्यजन ने जिंदगी आसान बनावन रा साजो सामान दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जयपुर विकास प्राधिकरण रा नागरिक सेवा केंद्र माए लगाया जा रहा शहरी सेवा शिविर रो दौरो कर व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। ये मौके वे कहो कि ऐ शिविर सरकार री सुशासन और जन सेवा री सोच ने सांचीकरण माए खास काम कर रहा है। मुख्य सचिव शिविर माए मौजूद लोगों सागे बातचीत कीनी। वे अहलकारा ने शिविर माए आवन वाला लोगों ने साफ कोई सागे आसान तरीका टेम सर सेवा मुहैया करावन रा हुकम दीना।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें जमीनी स्तर पर, और उसी अनुसार शिविर लग रहे हैं 12 जून से लेके 15 जुलाई तक। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर स्तर पर, सब डिविजनल ऑफिसर स्तर पर, नगर निकायों के साथ विचार विमर्श किया। इसमें यही निर्देश दिए कि ग्राउंड स्तर पर पहुंचें और लास्ट माइल डिलीवरी को इम्प्रूव करें। सुशासन के प्रति राजस्थान सरकार का जो डीप कमिटमेंट है इसको और ज्यादा मजबूत करें।
0: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज भरतपुर और डीग माई लगाई गया शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। वह जनताओं सरकार री न्यारी न्यारी योजनावां रो फायदो लेवण री अरज कीनी। गृह मंत्री जवाहर सिंह बैठमी करौली माई व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। सलूंबर जिला रा नगर परिषद हलका माई काल शिविर लगाया जावेला, जदके गांवई हलका माई मैथुड़ी झल्लारा की माता सुला जय समुंदरी पीलादर सेमारी री सड़कड़ी सराड़ा री चावंड और लसाड़िया री सती की चोरी ग्राम पंचायत माए शिविर लगाया जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर जिला रा श्री डूंगरगढ़ माए नेशनल हाईवे नंबर 11 माथे आज एक कार रे दम

0: पर री फेंट माई आजावन रे कारण व्या हादसाओं एक ही परिवार रा छह जना री मौत वेकी। मरण वाला माए दो महिलावा एक लोग और तीन बच्चा शामिल है, जबकि एक टावरी घनी जख्मी वेगी जिनरो बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए इलाज चल रियो है। कार माए सवार ए लोग हरियाणा रा माए फतेहाबाद रा रहवासी हा। असम रा जोरहाट माए भारतीय वायुसेना रा AN-32 विमान हादसा माए वीर गति हासिल करने वाला नागौर रा वायु अग्निवीर खेमाराम कुमावत रो आज मारा गांव पांचोटा माए फौजी मानसा गए दाग करती चियो। मारी पार्थिव देह खास विमान जयपुर हवाई अड्डा माथे लाई ची। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर री सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ खेमाराम कुमावत री देह माथे फूल चढ़ार माना श्रद्धा भाव सागर याद की ना। प्रदेश माए बच्चा न दस्त लागण बचावन और दस्त तो मंदा भया बच्चा रा इलाज सारू चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर काल स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करियो जावेला। 31 जुलाई ताई चलन वाला ई अभियान रा तहत 5 साल री उम्र छोटा बच्चा माए डायरिया री रोकथाम टेम सर इलाज साफ सफाई पीवन रा साफ पानी और जन जागरूकता सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जावेला। चिकित्सा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि डायरिया आज ही बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ी गंभीर चुनौती है। वह कहो कि उनाला और चौमासा माए बच्चों ने दस्त लागण री बत्ती शंका रहे है और एड़ो भेवन री सूरत माए इलाज नहीं मिलन पर मौत रो खतरो ही वह है। स्वास्थ्य विभाग माए बाल स्वास्थ्य रो काम देख रहा परियोजना निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी बतायो कि अभियान रे दौरान स्वच्छ जल समुचित उपचार डायरिया से बचें हर बार मुद्दा मत है कार्यक्रम रखा जावेला।
1: इस अभियान के दौरान जैसे दस्त की रोकथाम के संबंध में जो गतिविधियां होती है शुद्ध पेयजल का सेवन साफ सफाई स्वच्छता इनके संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो हमारे वेरियस लाइन डिपार्टमेंट है जैसे इसमें UDH हो गया PHED हो गया और पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट और हमारा WCD डिपार्टमेंट इन सबके साथ मिलकर एक जन जागरूकता का अभियान चलाया जाना है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर प्रति बच्चा अगर घर में 5 साल से छोटा एक बच्चा है तो 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली ये हम घर पर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए आज महिला और बाल विकास विभाग री ओर अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक रखी ची। इनरो खास मुद्दों पोषण संतुलित आहार और स्वास्थ्य तथा बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रखी चियो। विभाग री शासन सचिव पूनम बतायो के मीटिंग रे दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यार्थियां रा माए तांसागर केंद्र री अगली कार्य योजना बच्चा री आंगनबाड़ी केंद्र माए रोजीना हाजिरी शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम और पोषण जुड़िया व्यवहार माए बदलाव रे बारा माए चर्चा कीनी। रबा मौसम प्रदेश रा उत्तराद उगनी जिला माए आज ही कठे कठे आंधी बारिश हुई। हनुमानगढ़ माए आज हमारा तेज अंधड़ सागर हुई बरसात तो सड़क माथे पानी भर गयो। झुंझुनू माए दोपहर पाछे कई थोड़ा जोरदार बायरो बाजन सागर बिरखा भी। चूरू और डीग माए आंधी पाछे बारिश हुए वणु मौसम ठंडो भे गयो। राज्य के उगनी जिला माए आंधी बारिश रा समाचार है। दूजी कानी आतुणी हल्का माए हाल ही उमस और गर्मी रो जोर है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा और जोधपुर संभाग माए आवता 4-5 दिन ताई आंधी बारिश चालता रहे वन रा आसार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। ई सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो प्रदेश रा शूरवीर देश री हिफाजत माए खास काम कीनो। आयुष मंत्रालय 12वो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आज औपचारिक कार्यक्रम री शुरुआत कीनी। बीकानेर जिला री स्ट्रीट डूंगरगढ़ में हुआ सड़क हादसा रे कारण एक ही परिवार रा छह जना री मौत। हर प्रदेश में बच्चा न दस तू बचावन और इलाज शुरू। काल स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू करियो चावेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: यह रेडियो गार्डन सिटी जहरमेर एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्रामजनों सुनाले सभी भाइयों ना मनोज भाई राम राम। देखो कार्यक्रम भगत है, सबसे पहले तो जो है भाइयों ना, ये गर्मी रे मौसम में पूर्णतः सावधानी बरतने सलाह देसो। आप ना जो भी काम काज है उन समय अनुरूप देखते हुए एकदम आप देखा करो, कई टाइम जो है दोपहर में दोपहर 3 बजे से लेके 5 से 6 बजे तक तड़की धूप रहा करे, तो थोड़ा से जो है वो तालमेल बैठा के आप जो भी है काम काज वो साफ करें। पूरे साथ साथ आज आप चर्चा और सबसे पहले विषय रहे खादी और ग्रामीण रोजगार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता और सबसे प्रमुख माध्यम है। यह क्षेत्र पारंपरिक जो है हस्तशिल्प बुनाई कुटीर उद्योग के माध्यम से लगभग कई संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कराया करे। खादी और ग्राम उद्योग में आया करे सूक्ष्म लघु और मध्यम जो अंतर्गत कार्यक्रम आया करे, ये में कई अलग अलग जो है महिलाओं वास्ते अगर बात करो तो खादी क्षेत्र में कुल कार्यक्रम में 80% से अधिक महिलाओं जो है पैदा करे। खादी ग्राम उद्योग कुल कारोबार जो है वो कई लाख करोड़ तक जो है बताया जाए। ईरमा जो है सोने सूती ऊनी रेशमी खादी के अलावा शहद अगरबत्ती साबुन हस्तशिल्प और चमड़े और कॉम भी जो है प्रमुख हिस्सा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग खुद व्यवसाय जो खाद प्रसंस्करण हस्तशिल्प या वस्त्र निर्माण शुरू करना चाहो तो सरकार की तरफ से भी कई योजनाओं जो है लागू की गई है। ये तहत ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं नए उद्योग स्थापित करने वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी प्रदान की जा रही, और वो साथ साथ योजना रहे अंतर्गत पारंपरिक कार्यक्रम आधुनिक तकनीक कौशल प्रशिक्षण और उन्नत उपकरण प्रदान किया जा रही। विभिन्न राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना द्वारा जो है ऋण भी उपलब्ध कराया जाओ। इस वास्ते और भी जो जानकारी चाहिए तो ये आवेदन वास्ते नजदीकी खादी बोर्ड कार्यालय में इस बारे में जो है या पोर्टल में पूरी जानकारी प्राप्त करें, ताकि जो भी योजनाओं सरकार द्वारा या जो भी ऋण की उपलब्धता है उन्हें जानकर आप हुनर साथ जो भी चाहे वो सूती हो गए ऊनी रेशमी में या साबुन अगरबत्ती हस्तशिल्प चमड़ों कोई भी कार्य जिसको में वो निपुण हो वो आप जो है छोटे से व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र से शुरू कर सके और धीरे धीरे उन्हें जो है पढ़ाई के आप लोग और ज़्यादा तरक्की दे सके। पूरे साथ साथ देखो भाइयों आप और समय समय में से अलग अलग संदेश भी सुनाया करें, तो हमें आपको सुनता हूँ कुछ जरूरी संदेश।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा

0: घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो देखो भाई, आप सुने जरूर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के बारे में हर व्यक्ति ने मालूम है। तो ये जरिए जो है भारत सरकार काफ़ी हद तक जो है गैस व्यवस्था करवाए के ग्रामीण दूर दराज ठाणियों तक लोगों ने जो है गैस उपलब्ध कराई, ताकि जो धुएं से वहाँ छुटकारा मिले और उस होने वाली बीमारियों से भी जो है वहाँ राहत मिले। देखो, आप खादी में जब बात करें तो खादी का जो भी आप हॉस्टल प्रकार है पूरे जरिए ग्रामीण क्षेत्र में नया नया रोजगार स्थापित करने वास्ते सरकार जो है पोर्टल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या और भी तरीके से जो है प्रचार प्रसार करे, ताकि कई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप हुनर आप तक ही जा सकें। अगर उन्होंने जानकारी मिल सके, उन्हें सहयोग मिल सके, उन्होंने वित्तीय सहायता मिल सके, उन्होंने योजना और जानकारी होते तो पूरे जरिए वो आप हुनर ना बाहर ला सके और देश विदेश तक जो है वो जो है जरिए आप आमदनी ना बढ़ा सके। और साथ ही हमें आप बढ़िया राजस्थानी लोकगीत और पक्ष चर्चा रखना चाहिए।

तो देखो भाई, यहाँ पर सुनियो, बढ़िया राजस्थानी लोकगीत हमेशा तान रखा जारी। 15 जून हर दिन जो है कोई ना कोई अलग दिवस के रूप में भी मनाया जाएगी। और आज वो विषय में जो है आप अगर बात करते हो तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून दुनिया भर में एल्डर एब्यूज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और बुरे बर्ताव और अनदेखी के खिलाफ एक साथ खड़े होने वास्ते दिवस जो है मनाया जाए। ये साल जो है ये थीम अवेयरनेस शो आगे एल्डर एब्यूज प्रिवेंशन नाम कॉम में लाना है। ये थीम ये सोशल प्रॉब्लम ना हल करने वास्ते ग्लोबल और कई तरह के जवाब भी जो जरूरतों में जोर दिया करे। ये रिकॉसिस जो है सिर्फ कम्युनिटी ना सेंसिटाइज करने से ज़्यादा वो में अच्छी तरह से इक्विप्ड प्राइमरी हेल्थ केयर और सोशल सर्विस सिस्टम शामिल हो जावे और अलग अलग कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट में अब्यूज में पहचान सके, रोक सके और वो मतलब जो है रेस्पॉन्स कर सके। ये प्रोग्राम फोकस जो है जरूर जानकारी फैलाना, कम्युनिटी ना जो है सेंसिटाइज करना, बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, बुजुर्गों के साथ अलग अलग तरह के अब्यूज के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, मौजूदा केयर और सपोर्ट सिस्टम की कमियों को हाईलाइट करना, बुजुर्गों के साथ अब्यूज ना रोकना और ठीक करने वास्ते मौजूदा कानूनी प्रोविजन के बारे में बताना जो है ये रो सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो जो प्रोग्राम है 15 जून ना जो भाया जाओ दुनिया भर में, ये जरिए जो है बुजुर्गों के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार या गलत हो उसके बारे में अवेयरनेस और अलग अलग जो है विषयों में चर्चा की जाए ताकि लोग जागरूक हो और उन्हें ये बारे में जानकारी मिले। कई बार कई लोग जो है कई बुजुर्ग है कई तरह से प्रताड़ित हुई और उन्होंने जो है ये जानकारी को उन्होंने कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वास्ते की कदम उठाना चाहिए। तो ये वास्ते जागरूकता वास्ते जो है प्रोग्राम बनाया जाए और उसके साथ ही जो है आप आज जो है एक और विषय में चर्चा करता हूँ। विश्व स्तर में जो है विश्व पितृदिवस या आप और फादर्स डे हर साल जून के तीसरे रविवार में मनाया जाए। ये अलावा सनातन और भारतीय संस्कृति में जो है माता पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने वास्ते ही ना मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाया जाए। यह दिन हर साल जून के तीसरे रविवार को मनाया जाए। ये दिन पिताओं का प्यार त्याग समाज व परिवार में उनके योगदान और सम्मान करने वास्ते मनाया जाए। ये दिन बच्चा अपने पिता वास्ते विशेष उपहार खरीदे, धन्यवाद कार्ड दिया करे, परिवार के साथ समय बिताए और आभार व्यक्त किया करे। भारतीय परंपरा में माता पिता ना जो है भगवान और दर्जो दिए गए है। कई लोग जो है अलग अलग दिवस जो है जो 14 फरवरी ने माता पितृ पूजन दिवस रूप में मनाए हुई वो साथ साथ जो है कि आज के दिन जो है पितृदिवस के रूप में मनाए जाए। और ये साथ ही अपन सुनता हूँ एक राजस्थानी लोक संगीत।

तो भाई आप सुने बढ़िया राजस्थान लोकगीत को ऊपर एक ली आप अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करी, जानकारियों भी बढ़िया सुन दी और जरूरी संदेश भी सुने हमें हो गया कार्यक्रम बखत। तो ले सौ सुशी और सुशासन जाना है। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत कार्यक्रम। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में पंडित भजन सोपारी से संतूर वादन, राग है यमन्ना।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे पंडित भजन सोपारी। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: फूल जब मांगते हैं परसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब चलते हैं दिल्ली। पहले सुनते हैं समाचार संध्या और उसके बाद 9 बजे न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिति M. पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
4: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: बिना स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का

0: सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात की दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.

0: भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जाम शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को तोसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर।
1: यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहे।
1: दोस्तों, गीत संगीत की दुनिया में 10:30 बजे हम और आप दोबारा चलेंगे। पहले सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। आज की कलाकार थी सीमा मिश्रा। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं राजस्थानी नाटक दाईजू। इस नाटक को लिखा है हरिवल्लभ बोहरा ने।

0: सुजन थारी भुआ भुआई भुआ तन गाय देवसुआ गाय ल्याई डूडियो भुआ पिए दूधियो दागड़ दागड़ बासी नकटी ताजी मासी।
1: तो भाभी भाभी निपती जा, कौड़ी कौड़ी खेलती जा। थोड़ी देर पहले आखो चौक चमचमाट करतो, पण हमें ते चौक सु चीला कर ने पूरो ही चित्तर दियो। छोरी तू तो मोजो अंत ले चुकी, हूँ तो धापी तैसू। ठहर जा तो सीधे तरीके से कोनी मन्ने तू, ले हमें रम ले।
2: काकी ऐसे की करियो, मुझे सारे खेल बिगाड़ दियो, उनकी खेलो भी नहीं।
1: ठहर तो हड़ा खेला हुई तनो अगी हुए सु, नहीं तो यह देखी है की है बुआरी पड़ी नहीं पुट्टी में, तो सारी एकड़ी छू होते भी
2: क्यों मारी क्यों
1: बताऊं। सच्चा पूछे नहीं तो पूरो घर दुश्मनी है मोजो, लारले जन्म रा बैरी।
2: क्यों मैं तो की कोनी करियो, आप रो खेल खेला है पाई।
1: आप रो ने बाप रो, छोरी ताजी है जिको जुब्बा ने नी कतर नी वजह चलन लगी है, ऐसा जा होठ नहीं है तो सीम ले।
3: अरे ये दिन उठते की रखो है तन्ना, ये दिखी दाय कोनी आवे की, क्यों बस रही है ये मते।
1: लो एक और पधार गया दिक्री रहे माइती, हमें एक महीने बाद सुधाई है दिक्री भी। एक महीने सु बराबर देखो ही पाई के पोती उठाए रवाने, नी दिन देखो नी रात, थे जाओ के तो ए बताओ
3: क्या
1: क्योंकि थोड़ा लेके टाबर गया चूल्हे में रहू गई केसरी सर में के धक्का खाता फिरी।
3: अरे हमें तन्ना कौन समझा सके, कैरी मां से रजमो खाया है भगवान, सुबेरी बेड़ा तो मीठी बोलिया कर, जद देखो जद हमसे लड़ो हमसे लड़ो, हमें घर में बहु आ गई है, पातोरा बाण कम चलाया कर, समझी ने।
1: हाँ हाँ हुईज कराई हाका, थाने हुईज दिखी लड़ाई कर, बहु आया पछे ये बैंत भरी छोरी री जुबान गज भरी होगी है, और तो और थे भी
3: करती रही हुईज बड़बड़ बड़बड़, मुँह तो जावाई मोरे जरूरी काम सो।
1: हाँ हाँ जाओ जाओ गौ

0: चोटे में सुनो ज्ञान री बात।
1: अन्नू, अरे ओ अन्नू,
0: अरे कुण मरियो, किवाड़ तोड़नो है की?
1: काकी, ए हुआ, हरखी।
0: की है? किवाड़ क्यों बचीड़ी पई?
1: काकी, ओ बहन जी अन्नू ने स्कूल बुलावे।
0: अच्छा, कोनी आवे? अन्नू स्कूल कोनी आवे? मना कोनी पढ़ावनी अन्नू नो? समझी? जा, जाहर कह दे ताजी मास्टर नीनो।
1: पण काकी, बहन जी कहो है कि अन्नू ने जरूर करने भेजो।
0: क्यों? त्याली हुए बहन जी रो कोई राज है मोजे घर मत है? अन्नू दिक्री मोजी है, हूँ कोनी भेजा हूँ मोजी अन्नू नो? एक दिन आई थी वो मास्टर नी, मैं तो साफ साफ मना कर दियो। साफ कहना सुखी रहना, वो दिन मना करियो तो भी आज बुलावी।
1: वो तो पूरे गौर ही छोरियों ने बुलवाई है।
0: लो बताओ, मास्टर नी की ठेको लियो ही सारी छोरियों ने बनाओ लो। जा, जाहर कह दे काकी नो कोनी बनावनी अन्नू नो।
1: मजी बात तो सुनो, बहन जी कहो है कि छोरिया लुगाया री भनाई गुनाई बहुत जरूरी है।
0: क्यों?
1: क्योंकि आदमी भनी जाए तो एक एक लगे रे मन में चंदड़ो होवे, पण भनी ओड़ी लुगाए आखे घर में चंदड़ो फैलावे।
0: तू मने एक बात बता, घर रो कौम, खेत रो कौम, गाय रो, खाटे रो, ए सब कौम कौन कर से? ताजी मास्टर नी? जा, जाहर कह दे नाम काट दो अन्नू रो।
1: हाँ, नाम काट दो, यहाँ नाम कोनी कटे काकी।
0: लो बैत भरी छोरी मन समझाण आई है, नाम काटन में की मुश्किल, एक लाइन फेरो नाम कटियो। देख भाई, मौजे घर में आगे ही सो कौम है, हूँ मौजी छोरी मथा पढ़ाई रो भार कोनी कर सको। मौजा तो करम पहले ही फूटी उड़ा है, की करो? घर में एक भणी गुणी बींदनी ले आया, पहले है ओ तो धापे मौजी छाती मथे मूंग दल दल।
1: कौन है काकी? थे क्या बात करो? पूनम बुझाई री?
0: क्यों, हूँ की डराई हुए सु?
1: पर काकी, पूनम बुझाई तो दिन भर घर काम सो।
0: कौम करी तो की न्याल करी मनो?
1: काकी, पर बुझाई है केत?
0: केत बड़ा केत, मुमल रोनी हाल तो मेडी सुई नीचे कोनी आई।
1: क्या कूड़ बोले काकी, ए घर सारो काम क्या निपटाए था? पण बुझाई मेडी में करे की है?
0: था कोनी मनो, सुनती कोनी? ए दिन उगते ही पौन मशीन चलन री खटखट खटखट।
1: अच्छा, तो पूनम बुझाई कपड़ा सिए पई। लो, थारो कुर्तो तैयार है।
2: अच्छा, ला देखो तो।
1: अरे कोई नहीं जान सके कि टॉपो लगोड़ो भी है कि ना। लो पैर अर देख लो।
3: बिंदनी, ओ बिंदनी, ओ चेतन री बहू।
1: देखो काकी जी बुल्ला भी पया, हणो पहुंचे आसे।
2: ओहो, घर रे कौन सु काकी तना छोड़े कोनी? दोपहर थोड़ो घणो टाइम मिलतो, जिको भी तू अन्नू नो सिलाई कटाई सिखाण में लगाई देवे। पर आजकल लुगाई नो पढ़ावण की छुरंगो छेड़ियो ही।
1: ए तो आपोरी गौरी भलाई री बात है, गौरिया लुगाई थारे मथे विश्वास कर थाना सरपंच चुनी, हमें थारो भी फर्ज है।
2: तैसु तो बात करण भी धर्म कोनी, जाने देखो जाने महिला कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, ये अलावा भी कोई विषय है? कितो बढ़िया मुंड तो, पर ना पेर घेर गट्टी आलो घर।
1: रेवंदो रेवंदो, ए बताओ कि शहर सु मीटिंग रे बाद पच्छा कब तक आसो?
2: के थी आओ रे के थी जाओ, रात बासो तो आप रे घर में ही पाओ।
1: बड़े
2: अच्छा छोड़, ए बता कि शहर सु ताजे की लाऊं?
1: की कोनी चाहिए छे?
2: सच्ची?
1: अच्छा, कह दो।
2: बेझिझक, पण गरीब रे मन और मनी ना देखर।
1: मन री तो मन्ना ठा कोनी, पण हां मनी री कोई मांगी चीज कोनी, पट्टी और बारखड़ी री किताब।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, बता कितनी लाऊं?
1: हाल फिलहाल तो छह ले आओ, बाकी पछे। मैं बेचार गांव आड़िया नो पाटी पोथी मंगाए देवन रो वचन दी हुई। बताओ लासो के ना?
2: लासो भाई लासो,
3: पण अरे बिननी सुनो ही के ना, कन में रुई ठोस रखी है की?
1: लो सुनो, हमें दिन भर रा ठोला तैयार है।
3: अरे चेतन
2: आयो काकी, आयो
3: की? आयो काकी, चौड़े धारे वेड़ी में कुसर कुसर करते शर्म कोनी आवे? लुगाई होई के कटे कोयो
2: काकी?
0: अरे रमेशरी छोकर की ई हरखी ना हूं ऐच समझाई रही थी, पण ना ये मथे की अनुरी सब सया मथे, ओए रूपाली पद्मन रोणी कमल कर रखी आई, मौजी तो कोई सुनेई कोनी।
4: हमें पधार रही है सवारी मारोणी री।
2: काकी हूं पंचायत रे काम सु शहर जाओ, वीडियो सु मीटिंग है।
1: पग्गे लगो काकी।
5: बुझाई जी, राम राम।
1: राम राम हरखी जी, कौकर हो? स्कूल को नहीं गया?
5: स्कूल से सावे पे ही बहन जी अन्नू ने बुलवाई है।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाओ। अन्नू जी, ओ अन्नू जी,

0: अरे ओ अनु जीरी भुजाई, मैं ना दियोई। अनु स्कूल कोनी जावे, अनु दिकरी मौजी है, हूँ मौजी छोरी ने कोनी भेजो स्कूल, समझी?
1: काकी जी, आज अनपढ़ अंगूठा छाप रेवन रो जमानो कोनी, भणाई गुणाई सु बत्तेरी समझ आवे।
0: बस बस, आपरे ज्ञान ज्ञान री बातो आपरे करने ही रेवन दो और चुप हो जाओ। कोई अदब कायदो भी है?
1: काकी जी
0: ना, हमें एक लफ्ज भी ना, हूँ नी बोलती उता दिन ठीक रहो, पर हमें ना बीनरी लायर में तो कोई सुख पायो कोई नहीं, सासुर राज में सुख देखियो कोनी, और सासु बनी तो बहु मिली ए।
1: काकी जी, यो क्यों बोल रही, कोई सुन सा तो की कैसे?
0: कैसे भले की, हंस से मैं मत है, पण कोई कहवे या हंसे, मु तो भरपाई।
2: माँ, हूँ गाय दाल भिजो दियो स्कूल सुबह। स्कूल?
0: कोनी जाओ स्कूल, चल जा माँ, काम कर घर रो।
2: काम? काम तो की बाकी कोई नहीं, भुजाई जी साहब काम निपटा दिया, बस रोटी बनानी बाकी है।
0: छोरी जुबान मत चला, मने ठाए तना कौन भड़कावी।
2: माँ
0: चुप कर, आई बड़ी मारी लाडकी, खबरदार जी दोबारा नाम लियो स्कूल रो, मौज आवे कि ना। अरविंदनी, वो थोड़ी पड़ोस में रोमली रे घर तक जाए रहा हूँ, थे डागले तो मिर्चा ले रहा हूँ कूटो।

0: अन्नु जी, घनी देर होगी काकी पच्छा को नाया।
1: पच्छी आसे दोपारा अजा तो चौपाल जमी हो से, एक एक कर आखे गौरी डांट पड़ी से, थारी मारी करन में टाइम तो लग सी।
0: हाँ अन्नू जी, लुगाई जात्री मोटी दुश्मन लुगाई आप ही हुई।
1: कौन है?
2: हुआ
1: हरखी आ रही या परसाल में आ रही
2: ना? हूँ तो स्कूल जावा है या बार देख कौन आयो है।
1: कौन आयो है? गुलाब जी जी।
0: अरे गुलाब भाई सा, बैठो की हाल बनाए रखी हो।
3: भुजाई कई हाल बताओ दिखे जुको के दो भाई जुको।
0: आपने तो सब हाल बताना पड़ी। ना ना रोना मी कुसुगन हो गई। अन्नू जी, काकी जी नो खबर तो करो कि गुलाब भाई सा आया ही। अच्छा भाई सा, चुप हो जाओ, लो थोड़ो पानी पी लो। बताओ तो सही कि होयो कि? लो देखो काकी जी भी आई गया।
1: ओ ओ ओ, की होयो गुलाब दिखरी? रोवी क्यों?
3: रोवी, रोवी उताजी जी ना। काकी, उताजी जी ना रोवी।
1: मौजे जी ने क्यों रोवी? मैं तो भलो घर भलो भर ऊंचो घरोनो दी करतनो परनाई थी।
3: तो की करूं? ओद पूरो सासरो घर मना मीना देवी।
1: मीना देवी क्यों? अरे मैं तो आपरी प्रसाद छु आगे जायर गाडा भर भर दियो। कम सु कम हुए टाइम में लाख रुपया खर्च हुआ था। मौजे तो घर ही नीवा तक पी लियो। हमें कोई कसर रही हुए तो अच्छा तू तार पी ले जावे।
3: बस कर काकी बस कर, थाजी दियोड़ी ये मड्डी रो हूं की करा। चट्टा की तीली लगाऊं? तू जमाने री हवानो क्या नहीं समझी? ते मेनो नी पढ़ाई नी लिखाई नी स्कूल जावन दी।
1: पण दिकरी वो टाइम में छोरियों ना स्कूल
3: तो नहीं भेजता था। ऐज कहनो चावे है नी तू? कूड़ हड़ा हड़ कूड़ बोले तू। जा जहरे देखो तो मौजे सासरे गांव में छोरा छोरी सब पड़े। हंसारे बीच कागली होवे जी हूँ एकली अंगूठा छाप। बाकी सब भणी गुणी आपरा कागज आप पढ़ी आप लिखी। की समझ में आवी मौजी बात?
1: दिकरी तो कहवे जाना समझ नहीं पड़ी। बीजो कोई कहता तो शायद हूँ नी भी मानती। जिणर आंसू मायड ना सब कुछ समझाए दी दिकरी। पण गुलाब हुमर ऊंचो घरणो भणियो गुणियो छोरो देखिस तो मौत ना दी थी। और इतो सारो दाइजो
3: धूड़ पड़े था जे ये दाइजे में। अगर देवनो इच्छा हुई तो आपरी दिकरियो नो काल जेरी खोलो ना शिक्षा रो दाइजो दो। आज अगर मैं कने भी शिक्षा रो दाइजो पढ़ाई लिखाई रा गहना होता तो आज मौजी भी हुए घर में इज्जत होती। हूं तो घर सुई गई हर घर धनी सुबी
1: है
0: की कोई भाई सा की नंदोई जी भी?
3: हाँ एक पढ़िए लिखी अफसर गले थोके सु मौजे चढ़ी अनपढ़ गवार लुगाई बनसो तो है इस भगत नो पढ़ से।
0: पण भाई सा नंदोई जी कहवे की है?
3: सुनो जावे

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी नाटक दाइजो। लेखक थे हरिवल्लभ बोहरा। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर। सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है जागृति।

देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना नवास्ता, दुनिया

में डाल के किस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के किस देश को रखना मेरे बच्चों।

संभाल के हम लाए हैं तूफान से गिट्टी निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों।

हम कि तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम कि तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के

0: मैं तिरंगा उछाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, को पूनम की छटा तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण।

से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया ना इधर जा सका, ना इधर जा सका ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको खड़ा, श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अब के बरस
1: तुझे धरती की रानी कर देंगे।
0: अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे।

अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे, अब के बरस।

ये जिंदगानी कर देंगे अब के बरस अब के बरस।

से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार। समाचार पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।

0: प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि इसराइली सेना 100 बार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की 3री बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेल में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी बनारस रेड बाइक की रंझा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: In the first visit to the European Union by Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed